कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ये साल 2024 मई महीने का सोमवार दिन और तारीख है 11। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो और HPT में मौजूद है हमारे पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी डोले और तकनीकी अभियंता PV दियोरी। तो बने रहे मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपकी आरजे याजू और वक्त हो चला है आज सुबह का हमारे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह छह बजे से लेकर 10:10 तक अरुण एफएम पर प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। छह बजे प्रस्तुत होगा हिंदी समाचार, 6:05 पर सुनिए अंग्रेजी समाचार, 6:10 पर रहेगा भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे श्रद्धा और अध्यात्म से भरे मधुर कृष्ण भजन। 6:40 पर प्रस्तुत होगा गालो बोली समाचार। 6:45 पर सुनिए सुबह सवेरे योग व्यायाम स्वास्थ्य सुझाव और मधुर संगीत से सजा एक रोचक प्रस्तुति। 7:10 पर रहेगा आपदानी बोली समाचार। 7:15 पर प्रस्तुत होगा प्रभात जानकारी कार्यक्रम, जिसमें मिलेंगे ताजा जानकारियां और स्थानीय पत्रिकाओं से चुनिंदा खबरें। 7:35 पर सुनिए तागिन बोली समाचार। 7:40 पर रहेगा सदाबहार, स्थानीय घोषणाएं, मौसम की जानकारी और सुकून भरे मधुर गीतों के साथ। 8:00 प्रस्तुत होगा समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनिए प्रभात समाचार। 8:30 पर रहेगा पूर्वोत्तर समाचार। 8:35 पर प्रस्तुत होगा हेलो ईटानगर, उपयोगी जानकारियों और बेहतरीन गीत से भरपूर एक विशेष कार्यक्रम। 9:00 सुनिए समाचार। 9:05 पर प्रस्तुत होगा अंग्रेजी समाचार। 9:10 पर रहेगा फिल्म गपशप, मनोरंजन जगत की चर्चित बातें, बॉलीवुड समाचार, चलचित्र समीक्षा और ओटीटी जगत की रोचक जानकारियों के साथ। 10:00 प्रस्तुत होगा हिंदी समाचार। 10:05 पर सुनिए अंग्रेजी में समाचार और इसके बाद 10:10 पर शुरू होगा रेडियो डिमांड। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के
1: साथ। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी

0: विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलोमेवो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. In the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. The swearing-in ceremony will be held at the Veterinary College playground in Khanapara and is expected to be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the five ministers who took the oath of office on secrecy along with the Chief Minister on Saturday at the Brigade Parade Ground. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Newly elected MLAs are also expected to attend the meetings. A guard of honour will be presented to Chief Minister Suvendu Adhikari at around 11 a.m. today, following which the cabinet meeting will take place. India now ranks third globally in installed renewable energy capacity. A new report by Morgan Stanley says India's renewable energy transition will help reduce external dependence, but its success will depend on how quickly the country localizes critical segments such as solar cells, wafers, domestic solar module capacity has nearly doubled from 38 gigawatts in March 2024 to 74 gigawatts in March 2025. Solar cell capacity has also increased from 9 gigawatts to 25 gigawatts. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav will release two cheetahs into the wild at Kuno National Park in the Gwalior Chambal region today. Prime Minister Narendra Modi launched Project Cheetah in September 2022 by introducing eight cheetahs brought from Namibia into Kuno National Park. It was the world's first intercontinental big cat relocation project. This was followed by the arrival of 12 cheetahs from South Africa in 2023 and nine more from Botswana in February this year. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. Taking cognizance of the bad weather, Garhwal Divisional Commissioner Vinay Shankar Pandey has appealed to the devotees and tourists that they must get the latest information about the weather during their journey and plan it with utmost care. The Indian Embassy in Madrid, Spain has said that two Indian nationals aboard a hantavirus-hit cruise ship are safe and asymptomatic. The Dutch-flagged vessel MV Hondius, carrying around 150 people, including two Indians, arrived in Spain yesterday and anchored off the Canary Islands following the outbreak. According to the embassy, passengers disembarked in line with protocols issued by the World Health Organization and Spanish authorities. The Spanish National Center for Emergency Monitoring and Coordination said the two Indians who were working as crew members have been evacuated to the Netherlands, where they will undergo quarantine under health safety protocols. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in a last over thriller in Raipur last night. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs, riding on Tilak Verma's 57 off 42 balls. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, सुबह की सुहानी और ताजगी भरी फिजा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और अब शुरू होने जा रहा है सुबह के खास कार्यक्रमों का सिलसिला, जहां पर होगा भक्ति जानकारी, स्वास्थ्य समाचार और मनोरंजन से भरपूर। तो अपनी सुबह को और भी खुशनुमा बनाइए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि अब वक्त हो

0: भरे मधुर गीत अरुण एफएम पर। उम्मीद है इस आध्यात्मिक प्रस्तुति ने आपके मन को शांति और ऊर्जा से भर दिया होगा। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब वक्त हो चला है गालो समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगा तम दारुम रोगाम जाबम तगला लुसिर पोलग आलो लोई को लो किन तारिक ओक हुम पाल लोन आलो हुगो गालो मेंग के नाग में लेंजी है में लेंजी दाखनेंगो लिरिक अत यूनियन होम मिनिस्टर नर्म अमित शाम मलो पूम इन ला इस अतुप तला ओक हिलीराम पेन हिगराम पुल लग देन दोनी नी देनम अक ना होमो यमने दागरी हिन्नान लगाब कांत्रिक इजाग लमो दुनाम अबागा दमने लकेन गोदा कादी तादी तोकु डेली लो हाई लेवल मीटिंग के बाद ने बागदाग लंदर में शाम सेंट्रल गवर्नमेंट ग एजेंसी गाद ग लमो नामम ने अल्लू ब काकुप ताले तो कु ओक हक ना ही ग्राम ही की नी ग ये नाम दो नाम लो पुलग माद ब ओक ये ग गुदाई समसिन मुलुक मो माद ब मला इंश्योर जी नाम लगा ब अर्ली वार्निंग सिस्टम रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ओक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग ओक गाद लोसिन म रिव्यू गो इतकु होम मिनिस्टर ने मामा नातुंग में मलो डोबार अलोगो ईटानगर लो वन डे नी तम तम सर दो कुंग बेलेडिक्ट्री फंक्शन अबा ओक निशिगु मिन होइंग ग सह सनम ओक कोयुम को लोग अनाब ग दोय ई सनम म ई सला हान मम ने एनिमेशन ब स्क्रीन लो का तम नाम प्रोग्राम अबा ओगो सिन आलक तो ओके प्रोग्राम अबाम ने अजीगो उ पाजे दागला नर्म नातुम सोशल मीडिया पोस्ट को लो हम मेंज तो हक ना अबा हेगी निशिगुमिन होइन ग गग हक नापाग नितम दोय उ नाम ओक कोयुम ग अनाब ग हेन नाम पान मम ने नेम कुमा ब तू हु बालेला लख नाम लो माज ब इगुर दो कुमला मेन तो ओक हिम इग नाम ग लग लोक आल देन आजोल गतम सिन निशिग नितरु न गग हगम ने अलु ब का हेनला हेन लिए नाम लो मुन्नम ने इगुरे कुमला बेंतो सीनियर लीडर डॉक्टर हिमांत बिश्व शर्मा ने आसाम ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी ग इकलो इताला एनडीए ग लीडर बसिन पार्लियन काकु मरो गुवाहाटी लो लेजिस्लेचर पार्टी ग कबादू दुओगो नर्म रंजित कुमार दास विश्वजीत डायमरी अजंता नियोग राजदीप रॉय अशोक सिंघल ओक पीयूष हजारिका नारूअम ने कताला पीन बीजेपी एमएलए लेजिस्लेटर पार्टी ग लीडर बमला डॉक्टर शर्मा ग अमनम ने लात को ओक ओक दूलग न कब कब एमएलए का दसिन एम आगुमम ने तालगला तालग बताला आगुमम ने तोलग हित को ओक ओक ब आसाम गण परिषद ग ई एमएलए ओक बीपीएफ लेजिस्लेटर ग पेंकोलो एजीपी लीडर अतुल बोरा ओक बी एमपीएफ लीडर नर्म रियोन डायमरी मुन्य एनडीए ग लीडर बमला डॉक्टर हिमांत विश्व शर्मा ग एन आमनम ने गाक्तो तनगाद नुनु हिर्ग गालो मेंके नागो भीम ने आकाशवाणी ईटानगर लोक तपादो ओके ओक प्रपोजल कोकुब बीजेपी ग सेंट्रल ऑब्जर्वर नर्म जगत प्रकाश नादाम डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने बीजेपी ओक एनडीए का लीडर कुमला ऑफिशियल ब मेंकिन जीत को इस यांग डिस्ट्रिक्ट रायंग दोलो लो केन लो हुंबा लो ना लोगो ट्यूटर प्रोडक्शन एम नाम अबालो अलो हमनी रेसिडेंटल वर्कशॉप एम ने अल्लु ब इपु ब इंगाम गा का द कारपुंग कार्दुक आर्ट एंड कल्चर एकेडमिक ग इग नाम वर्कशॉप हिम ने हुगो दोगो ग ताको काको नाम रिनोड आदि फोक आर्टिस्ट नर्म दलोंग पादुंग काया ताया को आरालो इग तो होगो फोक कल्चर ग तुरुलो ग तुकुम दोकुम ग ने दोबायम ने अल्मा व्यूज नाम ग एगेंस्ट ब एवरनेसम ने नारुलो पुपेन कामा ब बुद ब अम्ला रुदुला लम तोकु वर्कशॉप ओगो गुवाहाटी आसाम इस सियांग ओक अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ग ताको काको नाम फोक आर्टिस्ट गादसिन आलक तो ओक एकेडमिक ग पेले लोग होक पोल ग आलो लो युगोल लो इन तारिक लो इटानगर ग डीके कॉन्वेंशन हॉल लो नातो कम कातम दो बमला पार्का ट्वेंटी नाइन्थ क्यूरुगी ओक इलेवन पोमसेई स्टेट लेवल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2025-2026 मलो रूपा ग वांगदी इंडोर स्टेडियम लो इंगाम का

नमस्ते ईटानगर, अरुण एफएम के सभी श्रोताओं का मेरा यानी आपकी आरजे याजू का प्यार भरा प्रणाम। आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार, जो हमारी संस्कृति और मिट्टी की महक हम तक पहुंचाता है। अब वक्त हो चला है एक नई शुरुआत का, एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा का। हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

दोस्तों कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, पर आज की भाग दौड़ जिंदगी में हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपने सेहत को भूल जाते हैं। हम पैसों के पीछे भागते हैं, काम का बोझ में दबे रहते हैं, लेकिन उस शरीर का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं जो हमें हर पल साथ देता है। इसलिए आज का ये सफर पूरी तरह समर्पित है आपके फिटनेस, आपकी मानसिक शांति और आपकी मुस्कुराहट को। तो चलिए इस ताजा और सुनहरी सुबह का शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं हमारी सांस तेज चलती है, और जब हम शांत होते हैं तो सांस गहरे होते हैं। हमारी सांसें हमारे जज्बातों का आईना होता है। योगा सिर्फ शरीर को मोड़ना या कठिन पोस्चर बनाना नहीं है, बल्कि अपने मन, अपनी आत्मा, अपने और अपने सांस पर काबू पाना है। ये एक 5000 साल पुरानी कला है, जो आज के स्ट्रेस भरी दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा है तो बस 5 मिनट निकालिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। सूर्य नमस्कार की वो 12 मुद्राएं न सिर्फ आपके मसल्स को एक्टिवेट करती है, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करती है। इससे आपका मूड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिमाग को ऑक्सीजन मिलते है। ईटानगर की ये हसीन वादियाँ, ये शांति और ये ताजा हवा, इससे बेहतर जगह और क्या होगी, वो भी योगा के लिए। जब आप पहाड़ों की इस हवा में प्राणायाम करते हैं तो आपका शरीर अंदर से प्योरीफाई होता है। चलिए मन को और थोड़ा सुकून देते हैं और इस सुबह को थोड़ा और सुरीला बनाते हैं इस अगले नगमे के साथ।

संगीत का नशा और सुबह की ठंडक क्या बात है। मैं हूं आपकी आरजी याजू और हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि फिटनेस के लिए जिम जाना ये या महंगे इक्विपमेंट्स जरूरी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में पसीना बहाएं, असली फिटनेस कंसिस्टेंसी में है। अगर आप रोजाना सिर्फ 20 से 30

मिनट तेज चलते हैं, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, या थोड़ी देर जॉगिंग करते हैं, तो आपका हार्ट आपको थैंक यू कहेगा। हमारे अरुणाचल के पहाड़ी रास्ते तो वैसे ही हमें फिट रखते हैं। हर चढ़ाई आपकी एंड्योरेंस बढ़ाती है और हर उतराई आपके बैलेंस को बेहतर करती है। ये तो अपने आप में एक नेचुरल कार्डियो सेशन है, बस जरूरत है थोड़ी सी रेगुलरिटी की। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो आपके गोल्स और आपके सक्सेस को जोड़ा करता है। याद रखिए, एक दिन की मेहनत से या एक दिन सलाद खाने से शरीर नहीं बनता, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों के से बड़ा बदलाव आता है। तो अपने जूते पहनिए, थोड़ा पसीना बहाइए और महसूस कीजिए वो एनर्जी जो आपके अंदर छुपी हुई है। निकल पड़िए इस ताजा हवा का लुफ्त उठाने।

दोस्तों जाते जाते कुछ बहुत ही खास और असरदार बातें सीधे आपके किचन और आपके लाइफस्टाइल से। हेल्थ सिर्फ वर्कआउट से नहीं बल्कि सही जानकारी से आती है। पानी का महत्व और तरीका, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए कम से कम 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पिए, यह आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को वेकअप कॉल देता है और रात भर जमा हुए टॉक्सिन को बाहर निकालता है। कोशिश करें कि पानी बैठकर और घुट घुट करके पिए, जैसे चाय पीते हैं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म 24% तक बढ़ सकता है। ब्रेकफास्ट की पावर, कहते हैं नशा राजाओं की तरह होना चाहिए। ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए। इसमें प्रोटीन जैसे अंडे, स्प्राउट्स या हमारे लोकल ग्रेन शामिल है। ये आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है ताकि आपको दिन में बार बार भूख ना लगे और काम में मन लगे। शुगर और नमक पर कंट्रोल। सफेद चीनी और ज्यादा नमक दोनों ही सेहत की दुश्मन है। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें और नमक की मात्रा कम रखें ताकि ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ सही रहे। लोकल और सीजनल फूड, हमारे अरुणाचल की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ईटानगर में मिलने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां, बांस की करील यानी बैम्बू शूट्स और ताजा फलों में जो न्यूट्रिएंट्स है वो शहरों की कैन फूड में नहीं मिलेगा आपको। सीजनल फल खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। बात करते हैं मेंटल वेलबींग की। इन सब के बीच अपने दिमाग का ख्याल रखना मत भूले। रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल फोन दूर रखे। कम से कम 7 या 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए, क्योंकि शरीर की रिपेयर तभी होती है जब आप सो रहे होते हैं। और लास्टली मुस्कुराहट, सबसे बड़ी और सबसे सस्ती एक्सरसाइज है खुलकर हंसना। जब आप हंसते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को कीजिए बाय बाय और फिटनेस को कीजिए हेलो।

दोस्तों वक्त की सुई किसी के लिए नहीं रुकती और हमारा आज का सफर भी यही खत्म होने का कागार पर है। पर याद रखिए, सुबह सवेरे सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक वादा है जो आप हर सुबह अपने आप से करते हैं, एक बेहतर और स्वास्थ्य कल का वादा। आज हमने योगा की शांति, एक्सरसाइज का जोश और सही कान पान की समझ के बारे में बात की। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके कानों से होते हुए आपके दिल तक पहुंची होगी और आपको एक नया दिशा निर्देश देंगी। फिटनेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है जिस पर हमें हर दिन चलना है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजी याजू। कल फिर मिलेंगे इसी स्टेशन पर इसी वक्त कुछ नई बातों और पुरानी यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का साथ निभाइए, खूब पानी पिए और अपनी मुस्कुराहट को कभी कम मत होने दीजिए।

नमस्ते, गुड मॉर्निंग ईटानगर, और एक बहुत ही ताजा और प्यारी सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं हूं आपकी आरजे याजू और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुणाचल की अपनी आवाज। अभी हमने न्यूज सुनी आपातानी भाषा में और अब वक्त हो चला है हमारे अगले खास जानकारियों से भरे सेगमेंट का, जिसका नाम है मॉर्निंग इंटरटेनमेंट। यह एक ऐसा सफर है जहां हम मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, दुनिया की बड़ी घटनाओं को याद करते हैं और अपने स्टेट की ताजा खबरों से जुड़े रहते हैं। आज तारीख है 11 मई और आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तो चलिए इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ ढेर सारी बातों के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आपको गाना पसंद आया होगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन यानी 11 मई के इतिहास की। अगर हम ग्लोबल स्तर पर देखें तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 330 एडी में आज ही के दिन रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन का द ग्रेट ने बाइजेंटियम को न्यू रोम के रूप में समर्पित किया था। इस शहर को हम आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ये सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक हब रहा। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी डेटेड प्रिंटेड बुक कौन सी है? वो है डायमंड सूत्र, जो 868 एडी में आज ही के दिन चाइना में ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए तैयार की गई थी। ये इंसानी ज्ञान को सहेजने का एक बड़ा करिश्मा था।

नाजी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ इकमैन को 1960 में आज ही के दिन अर्जेंटीना में मोसाड एजेंट्स ने पकड़ा था। ये ऑपरेशन आज भी दुनिया का सबसे डेयरिंग

मार्केट ऑपरेशन में गिना जाता है। 1997 में आज ही के दिन आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने दुनिया के सबसे बड़े चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरोफ को हरा दिया था। यह पहली बार था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानी दिमाग को टूर्नामेंट में मात दी थी। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि दुनिया हर रोज नए बदलाव और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। इसी बात पर सुनते हैं एक और सुकून भरा गाना।

स्वागत है एक बार फिर से। अब हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत की। 11 मई भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारी ताकत का प्रतीक है। 1998 ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2। आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए थे। इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक मजबूत परमाणु शक्ति बन चुका है। पोखरण टेस्ट की इसी यादगार कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के हुनहार साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को डेडिकेट किया जाता है। 11 मई 2000 को भारत ने एक बड़ा माइलस्टोन टच किया था। आज के दिन

भारत की आबादी रस्मी तौर पर 11 करोड़ पहुंच गई थी जब आस्था नाम की बच्ची ने जन्म लिया था। 1857 दिल्ली पर कब्जा। हमारी आजादी के पहली लड़ाई के दौरान आज ही के दिन मेरठ की क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर उस पर कब्जा किया था और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था। दोस्तों, आज का दिन हमें गर्व करने का मौका देता है कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी और हौसले दोनों में आगे हैं। चलिए एक और गाना सुनते हैं, फिर जानते हैं अरुणाचल का हाल।

वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में। अब वक्त हो चला है हमारे स्टेट की सबसे बड़ी खबरों का। अरुणाचल टाइम्स के मुख्य समाचार इस प्रकार है। चारू पेशी एशियन चैंपियनशिप, अरुणाचल प्रदेश की हुनहार वेट लिफ्टर चारू पेशी आज से गांधीनगर गुजरात में शुरू होने वाली एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो 65 केजी कैटेगरी में मुकाबला करेंगे। सुबनश्री हाइड्रो पावर माइलस्टोन, डिप्टी सीएम चाउना मैन ने एनएचपीसी को बधाई दी है सुबनश्री लोअर प्रोजेक्ट के यूनिट 4 की सफल कमीशनिंग पर। यह हमारे स्टेट की एनर्जी नीड्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईएलपी सिस्टम मॉनिटरिंग, आज के एडिटोरियल में इनर लाइन परमिट के मुद्दे पर जोर दिया गया है। सिटीजन ने डिजिटल मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन ड्राइव्स को और सख्त करने की मांग की है ताकि हमारी इंडिजिनियस आइडेंटिटी सुरक्षित रहे। स्टेट टाइकंडो चैंपियनशिप, नाहरलगुन की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम ने 29 स्टेट लेवल टाइकंडो चैंपियनशिप का ओवरऑल टाइटल अपने नाम कर लिया है। रूपा में आयोजित इस इवेंट में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। न्यू मिस्टर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में आयोजित 10th स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में तामिपीता तर ने मिस्टर अरुणाचल 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफर मॉर्निंग इंफोटेनमेंट में। उम्मीद है कि इतिहास की इन गहराइयों और आज की ताजा खबरों ने आपकी सुबह को और भी जानदार बना दिया होगा। दोस्तों वक्त हमेशा चलता रहता है, लेकिन आज की तारीख हमें याद दिलाती है कि सही दिशा में की गई मेहनत और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किसी भी देश को महान बना सकता है। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो अपने आसपास के हर उस इंसान का शुक्रिया अदा कीजिए जो नए नए आविष्कारों से हमारे जिंदगी आसान बना रहे हैं। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आकाशवाणी ईटानगर पर प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस खूबसूरत दिन का पूरा लुफ्त उठाइए। मैं हूं आपकी आरजे याजू, अब लेती हूं विदा। अब आप सुन पाएंगे

0: नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होते हैं दिल से दिल की बात। अभी अभी आपने दागिन भाषा में हमारे रीजनल न्यूज बुलेटिन सुनी और अब वक्त हो चला है आपके सबसे अजीज, आप सबसे हसीन और हर दिल अजीज प्रोग्राम सदाबहार का। मैं हूं आपकी आरजे याजू। अगले कुछ मिनटों तक सुरों के इस पुरकेफ महफिल में आपकी साथी। दोस्तों, सदाबहार सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये एक जज्बात है जो हमें उन पुरानी यादों और उन बेमिसाल नगमों से जोड़ता है जो वक्त के साथ और भी निखरते जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारी ये हरी भरी वादियां और पहाड़ जो हर मौसम में एक नया रंग ओढ़ लेते हैं। आज 11 मई 2026 की ये दोपहर कुछ खास है। मौसम में एक अजीब सी ठंडक है और हवाओं में मिठास, पर दोस्तों में अकेले बातें करो तो मजा नहीं आएगा। तो आप हमें हमारी स्टेशन नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। क्या आपने अपनी खिड़की से बाहर उन बूंदों को देखा है? चलिए इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर पहले सुरों का एक गुलदस्ता आपके नाम।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: वापस स्वागत है दोस्तों रेडियो की इस जादुई दुनिया में। आपका होस्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि मौसम का क्या भरोसा, पर हमारा फर्ज है कि हम आपको सही जानकारी दे ताकि आपका दिन बेहतर गुजरे। पहले बात करते हैं हमारी अपनी राजधानी ईटानगर की। आज ईटानगर का मिजाज थोड़ा नरम है। सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने धेरा जमा रखा है। आज दिन भर लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वही रात होते होते तापमान गिरकर 18 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। वैसे दोस्तों बारिश के इस मौसम में ईटानगर के सड़कों पर चाय और पकौड़े का जो मजा है वो कहीं और कहां। आप में से कितने लोग भी अभी किचन में चाय चराने का सोच रहे हैं, हमें जरूर बताएगा। चलिए इस खुशनुमा मौसम के नाम एक और नगमा।
1: डाउनलोड करिए और सुपीरियर हैंडलिंग स्टाइल डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग।
2: रूप तेरा मस्ताना प्यार

0: के बाद ही दोस्तों इन सुरों का नशा ही कुछ और है। आप जुड़े हुए हैं सदाबहार के साथ। दोस्तों ईटानगर के साथ साथ अगर हम पूरे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आज हमारा लैंड ऑफ द राइजिंग सन पूरी तरह से कुदरत की आगोश में है। 11 मई 2024 के लिए रिपोर्ट बताती है कि हमारे स्टेट का वेदर आज काफी वाइड स्प्रेड रहने वाला है। स्टेट के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में खास करके हमारे हिली एरियाज जैसे तवांग, जीरो और बोमदिला में बारिश के साथ साथ ठंडी तेज हवा चलने का अनुमान है। कुछ आइसोलेटेड जगहों पर थंडर और लाइटनिंग की भी वार्निंग है। इसीलिए अगर आप नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल कर ड्राइव करें। बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी लगभग 85% रह सकती है, पर ठंडी हवाएं आपको पसीना नहीं आने देगी। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त खेत में होंगे या अपने ऑफिस की टेबल पर बैठने के लिए जा रहे होंगे। कौन सा गाना है जो इस वक्त आपके दिल की सबसे करीब है? कौन सा ऐसा पुराना नगमा है जो आपको आपके बचपन की बारिश याद दिलाता है? सोचिए और गुनगुनाइए हमारे इस अगले गाने के साथ।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग।

जिंदगी की राहों में अक्सर हम पुराने गाने इसलिए गुनगुनाते हैं क्योंकि उनमें एक अलग ही सुकून होता है, बिल्कुल वैसा ही सुकून जो आज की इस बारिश और ठंडी हवा में महसूस हो रहा है। दोस्तों, आज हमने जाना कि 11 मई का दिन हमारे अरुणाचल के लिए बूंदों से बड़ा और सुहाना रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला आज रात तक जारी रह सकता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, आपका हौसला और आपकी मुस्कान हमेशा सदाबहार रहनी चाहिए। आकाशवाणी का मकसद हमेशा से आप तक सही जानकारी और बेहतरीन मनोरंजन पहुंचाना रहा है और हमें फख्र है कि हम आपके घरों का, आपकी दुकानों का और आपके सफर का एक हिस्सा है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, पर याद रखिए, सुरों का यह सिलसिला कभी रुकता नहीं है। मैं जल्द ही लौटूंगी नए गाने और नई बातों के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बारिश का लुत्फ उठाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपकी आरजे याजू। अब लेती हूं विदा।

दोस्तों ये था सदाबहार, उम्मीद है इन सुरों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब वक्त हो गया है शिलांग और दिल्ली केंद्र से समाचार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
7: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
8: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
9: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
3: सेमीफाइनल में कलेश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिन तो तक सुरों की इस महकती हुई महफिल में आपका साथी हूँ। दोस्तों आज 11 मई 2024 है। आज का दिन एक तारीख नहीं है बल्कि हमारे देश के लिए गर्व, शक्ति और दिमागी ताकत का दिन है। आज पूरा भारत मना रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी जो आज हमारी सांस, हमारी दोस्ती और हमारे हर एक सुविधा का आधार बन चुकी है। इस पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक दिन ने भारत की किस्मत बदल दी थी। मगर पहले शुरू की एक प्यारे से थपकी के साथ शुरू करते हैं ये सफर।
1: हेलो ईटानगर।

स्वागत है आप सबका फिर से। हेलो ईटानगर में आज का विषय बहुत ही खास है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या आपको पता है कि इस दिन की नींव कितनी गहरी है? दोस्तों, इस दिन की कहानी शुरू होती है 11 मई 1998 को राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान यानी पोखरण में भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए 5 सफल न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। इन धमाकों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब एक न्यूक्लियर स्टेट है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे साइंटिस्ट के इस बलिदान और दिमाग को सम्मान देने के लिए 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया। लेकिन बात सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक नहीं रुकी दोस्तों। आज ही के दिन भारत का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 ने बेंगलोर में अपनी पहली उड़ान भरी थी। और इतना ही नहीं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। एक ही दिन में तीन बड़ी कामयाबी। यह दिन हमारे देश के उन अनगिनत साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट को सलाम करने का दिन है जो लैब में दिन रात एक कर देते हैं ताकि हमारे जीवन आसान हो सके। चलिए इस गर्व के एहसास के साथ सुनते हैं ये अगला नगमा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जिंदगी और टेक्नोलॉजी दोस्तों आज ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ बड़े रोबोट्स या कंप्यूटर्स नहीं है, इसका असली असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर है। आज हमारे अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जहां कभी चिट्ठी पहुंचने में हफ्ते लगते थे, वहां आज 5G और सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से पल भर में वीडियो कॉल्स हो जाते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे किसान भाई अब वेदर एप्स और सोइल टेस्टिंग सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एजुकेशन की दुनिया बदल गई है। जीरो या तवांग के किसी गांव में बैठा बच्चा भी आज इंटरनेट के जरिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ सकता है। इस साल 2024 का जो थीम है वो है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो हमारे धरती को नुकसान ना पहुंचाए। हम डिजिटल इंडिया की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर हमें ई वेस्ट और नेचर का भी ध्यान रखना है। एक आरजी होने के नाते मैं टेक्नोलॉजी को एक जादू की तरह देखती हूं। पहले रेडियो ट्रांसमिशन के लिए कितनी मुश्किलें होती थी, लेकिन आज डिजिटल कंसोल्स और हाईटेक ट्रांसमीटर्स की वजह से मेरी आवाज बिना किसी रुकावट के आपके घरों, कारों और मोबाइल फोन तक पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा पुल बनाया है जिस पर चलकर मैं आपसे हर रोज मुलाकात कर पाता हूं। इसी बात पर पेश है अगला गाना,
3: द बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा मम्मी।

0: दोस्तों टेक्नोलॉजी जरूरी है, पर एक दोस्त होने के नाते एक बात जरूर कहूंगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें पर इसके गुलाम ना बने। डिजिटल दुनिया में खोइए मगर ईटानगर की खूबसूरत हवाओं और अपनों के साथ वक्त बिताना मत भूलिए। आज हमने नेशनल टेक्नोलॉजी के बहाने उन सभी महान दिमागों को याद किया जिन्होंने भारत को एक ग्लोबल टेक पावर बनाया है। अगली बार जब आप कोई डिजिटल पेमेंट करें या मोबाइल पर कोई जानकारी पढ़ें तो उन साइंटिस्ट को जरूर याद करें जिन्होंने इसे संभव बनाया। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है आज का ये बातें और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके दिमाग के किसी कोने में एक नई उमंग जगाई होगी। फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए सुरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM। दोस्तों कहीं जाएगा नहीं, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सूजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और राजस्थान में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। विभाग ने असम, मेघालय, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal comes at a time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
2: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
4: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv today, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga at Somnath Mahadev Temple in Gujarat. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow will also be organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also be present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari will chair a meeting of the Council of Ministers at the State Secretariat Nabanna today. Portfolios are expected to be distributed among the five ministers who took the oath of office and secrecy along with the Chief Minister on Saturday. The new cabinet is expected to discuss the BJP's electoral promises. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by Indian Meteorological Department and the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. Taking cognizance of the bad weather, Garhwal Divisional Commissioner Vinay Shankar Pandey has appealed to the devotees and tourists that they must get the latest information about the weather during their journey and plan it with utmost care. Today is National Technology Day. Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have extended their greetings to technocrats and tech-savvy youth. In a social media post, Mr. Shah said that government is driving India's growth by harnessing innovative prowess through a slew of game-changing initiatives. US President Donald Trump has described Iran's latest peace proposal as totally unacceptable as efforts continue to secure a deal to end the months-long conflict in West Asia. Mr. Trump wrote on Truth Social that he has read Iran's response from what he called its so-called representatives and said he does not like it. In football, India to play against host China in the crucial quarter-final match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों आज हम बॉलीवुड के चकाचौंध भरी गलियों से लेकर ओटीटी के डिजिटल पर्दे तक सब कुछ स्कैन करेंगे, तो कुर्सी की पैती बांध लीजिए क्योंकि आज गॉसिप का टेम्परेचर ईटानगर की गर्मी से भी ज्यादा हाई है। हम बात करेंगे आपके फेवरेट स्टार्स की प्राइवेट लाइफ की, आने वाली ब्लॉकबस्टर्स की और उन कॉन्ट्रोवर्सीज की जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू के इस हसीन कारवां को, पहले सुपरहिट नगमे के साथ।

0: قضیه تو چند لیره؟
1: یه کیا ہوا؟
2: What happened؟
3: پاور چلا گیا ہوا.
0: اب کیا کریں گے؟ Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया. इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया. पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया. आई एम सॉरी. एक्सक्यूज मी.

0: मुझे सपने आने लगे, अनन्या मुझे राखी बांध रही। मैंने सोचा कि बात हाथ से निकल जाए इसके पहले जाके मैं संभाल लेता हूँ।
1: हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ? अचानक क्या हुआ?
1: It's not you, it's me.
2: ये it's not you, it's me क्या होता है? ये दिखते
1: हैं। Relax, हमारा divorce नहीं हो रहा है। बस हम साथ

0: क्लास के बाद राम भाई चले?
1: नहीं, मुझे पढ़ाई करनी।
2: दोनों का झगड़ा हुआ है क्या?
1: तुम लोगों को और कोई काम नहीं है?

0: दोस्तों अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की, जहां एक फिल्म ने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है। रणवीर सिंह की मास एंटरटेनर फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर वाकई तबाही मचा दी है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 1795 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और अब ये बाहुबली 2 के अल्टीमेट रिकॉर्ड को तोड़ने के बिल्कुल करीब है। रणवीर के दोनों अवतार ने लोगों को पागल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ साउथ और मराठी सिनेमा का जलवा भी बरकरार है। रितेश देशमुख की मराठी एपिक राजा शिवाजी ने अपने दूसरे वीकेंड में ही 80 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है, जो मराठी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों, हर फिल्म लक लेकर नहीं आती। नीतू कपूर और कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म दादी की शादी हाल ही में रिलीज हुई है, पर रिव्यूज थोड़े ठंडे हैं और ओपनिंग कलेक्शन भी उम्मीद से कम रहा है। चलिए रणवीर सिंह की एनर्जी को सेलिब्रेट करते हैं इस धमाकेदार डांस नंबर के साथ।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: दोस्तों वापस आते हैं हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट गॉसिप कॉर्नर में, जहां दोस्ती है वही थोड़ी कंट्रोवर्सी और स्पाइसी न्यूज तो होनी ही चाहिए, है ना? पुराना मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। सिंटा की अमित बैल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है कि तनुश्री दत्ता का मीटू केस फॉल्स था, जिस पर तनुश्री ने पलट कर वार किया है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर तनुश्री और ट्रूथ फॉर नाना के बीच जंग चिढ़ गई है। बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस सलीना ने अपने हस्बैंड पीटर हाक पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि उनके बच्चों को उनके खिलाफ ब्रेनवॉश किया जा रहा है। ये न्यूज आजकल हर बॉलीवुड टैब्लॉइड की हेडलाइन बनी हुई है। संजय दत्त ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वास्तव 2 की स्क्रिप्ट रेडी है। 1999 के उस आइकॉनिक कैरेक्टर रघु को दोबारा बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस ने अभी से काउंटडाउन शुरू कर दिया है। इसी एक्साइटमेंट में सुनते हैं हमारा अगला गाना।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

बात करते हैं उन दोस्तों की जो भीड़ भाड़ से दूर अपने घर के सुकून में पॉपकॉर्न के साथ मूवीज देखना पसंद करते हैं। इस हफ्ते ओटीटी रिलीज प्लेटफॉर्म पर असली धमाका होने वाला है धुरंधर 2। अगर आपने ये फिल्म थिएटर में मिस कर दी है तो खुश हो जाइए, ये फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स और

करने का बेसब्री से इंतजार है। रिव्यू की बात करें तो एक दिन जुनैद खान और सई पल्लवी की डेब्यू फिल्म को कृतिकाओं से मिक्स रिव्यूज मिले हैं, पर डेब्यूटांट जुनैद की एक्टिंग और सई पल्लवी की

फिल्म गपशप की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 की तैयारियां जोर जोर से शुरू हो गई है। इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय बच्चन पहली बार एक ही दिन रेड कार्पेट पर साथ में वॉक करने वाली है। इंडियन फैशन और बॉलीवुड के लिए ये एक आइकॉनिक मोमेंट होने वाला है। वहीं सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ ने फिर से सबका दिल जीत लिया है। कनाडा में अपने कंसर्ट के दौरान कुछ प्रोटेस्ट हुए, पर दिलजीत ने माइक पर आकर बड़े प्यार से कहा, हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम मोहब्बत बांटना है, नफरत नहीं। उनकी इस बात ने उनके हेटर्स को भी मुंह बंद कर दिया है। चलिए, दिलजीत पाजी का एक हाई एनर्जी भांगड़ा ट्रैक तो बनता है।

0: दोस्तों, बॉलीवुड में गॉसिप्स कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ नए रूप लेती है। अब बात करते हैं जेंजी और स्टार किड्स की। बोनी कपूर ने कंफर्म किया है कि वो अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ श्रीदेवी की हिट फिल्म मोम का एक स्पिन ऑफ या सीक्वल प्लान कर रहे हैं। खुशी इस वक्त लंदन में वर्कशॉप कर रही है। साथ ही एक मजेदार बात शेयर करूं, सोहा अली खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि पटौडी और कपूर फैमिली की सारी अंडरग्राउंड खबरें सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है और वो है करीना कपूर खान। सोहा ने मजाक में कहा कि अगर बेबो के पास फोन है तो उन्हें किसी न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है। बेबो सच में बॉलीवुड की असली गॉसिप क्वीन है। अगला गाना करीना कपूर यानी बेबो कपूर के सभी दीवानों के लिए।
1: Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बेचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे

0: उन्हीं के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for a revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
3: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
2: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported from abroad. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit Parv 2026, marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbhabhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow has also been organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya has invited Chief Minister-elect Himanta Biswa Sarma to form a new government in the state, paving the way for the NDA's third consecutive term in Assam. After being unanimously elected leader of the BJP-led NDA's legislature party, Mr. Sarma, along with alliance leaders, met the governor at Lok Bhavan and formally staked claim to form the government. Mr. Acharya will administer the oath of office and secrecy to Mr. Sarma and members of the new Council of Ministers tomorrow. Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by India Meteorological Department amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and day after tomorrow. U.S. President Donald Trump has warned that the United States will target any Iranian trying to reach the country's highly enriched uranium, saying that the nuclear material is under constant surveillance by the U.S. military. In a televised interview, Trump appeared to play down the significance of uranium, which is believed to be buried under the rubble of nuclear facilities remaining in Iran for now. Iran's highly enriched uranium is one of the major sticking points between Washington and Tehran in ceasefire negotiations to end the 10-week U.S.-Israel war on Iran. U.S. President Donald Trump will pay an official visit to China from May 13th to 15th at the invitation of Chinese President Xi Jinping. This will be the first visit to China by a U.S. president in almost 9 years. The visit comes in midst of a prolonged U.S.-Israel-Iran war crisis over the blockade of Strait of Hormuz, causing global energy crisis. Indian equity markets fell down today with benchmark indices declined 1% each in early trade after the US and Iran failed to reach an agreement on a peace proposal related to the West Asia conflict. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Mumbai Indians by 2 wickets in Raipur last night. Earlier in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Today, Punjab Kings will face Delhi Capitals at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: का अपना शो रेडियो ऑन डिमांड। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजी याजू। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत ही करीब है। सुबह की इस ताजी हवा में जब आपके मैसेज भेजे हुए ये मैसेज और ये फरमाइश हमारे स्टूडियो तक पहुँचती है तो दिन की शुरुआत और भी खूबसूरत हो जाती है। रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ गाने बजाने का जरिया नहीं बल्कि ये एक जरिया है हमें और आपको एक दूसरे से जोड़ने का। तो चलिए बिना देर किए आज की पहली और बहुत ही अनोखी फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए

0: आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
1: दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प मैसेज आया है। ये मैसेज आया है चेयरपर्सन की तरफ से, जो सिंगल क्लब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी ये फरमाइश एक खास शख्स को डेडिकेट किया है, जिन्हें वो कहते हैं द अनफाउंड साजना। लेकिन दोस्तों, इस मैसेज में जो सबसे गहरी और थोड़ी इमोशनल बात लिखी है वो है प्लेस, यानी जगह के बारे में। चेयरपर्सन जी लिखते हैं कि उनका ठिकाना नोवेयर है, क्योंकि नो वन इज गिविंग स्पेस इन देयर हार्ट। चेयरपर्सन जी, आपने तो एक ही लाइन में कितना कुछ कह दिया है। ऐसा लगता है जैसे आपका साजना अभी तक आपको ढूंढ नहीं पाया है और दिलों में जगह की तलाश अभी जारी है। पर फिक्र मत कीजिए, आज आपकी ये आवाज और ये गाना आकाशवाणी के जरिए पूरे अरुणाचल के दिलों तक पहुंचेगा। शायद ये शुरू सुनकर वो अनफाउंड साजना कहीं से प्रकट हो जाए। तो सिंगल क्लब की इस बहुत ही स्पेशल और दिल से आई हुई रिक्वेस्ट पर पेश है फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये मेगा हिट गाना बोली चूड़िया।

चेयरपर्सन जी, आपने तो एक ही लाइन में कितना कुछ कह दिया। ऐसा लगता है जैसे आपका साजना अभी तक आपको ढूंढ नहीं पाया है और दिलों में जगह की तलाश अभी जारी है। पर फिक्र मत कीजिए, आज आपकी ये आवाज और ये गाना आकाशवाणी के जरिए पूरी अरुणाचल के दिलों तक पहुंच चुका है। वापस स्वागत है आपका रेडियो ऑन डिमांड में। सुरों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है क्योंकि आपके मैसेजेस की बारिश अभी भी जारी है। चलिए देखते हैं अगला मैसेज किसका है। दोस्तों, अगला रिक्वेस्ट मिली है लोअर सियांग के दीपा से। हमारे लिसनर्स कुकर रिवर जी ने हमें याद किया है। कुकर जी ने एक बहुत ही प्यारा नगमा चूज किया है और इसे डेडिकेट किया है अपने समवन स्पेशल के लिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं पर सुर सब कह देते हैं। तो गोकर जी, आपकी स्पेशल पर्सन के लिए ये रहा, ना तुम जानो ना हम।

दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले रिक्वेस्ट की तरफ जो आई है हमारे अपनी राजधानी ईटानगर से। अयांग ने हमें मैसेज भेजा है और उनकी दो फरमाइश है। अयांग चाहते हैं कि हम उनके लिए थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस का तड़का लगाएं। तो पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर का द डिस्को सॉन्ग और उसके तुरंत बाद अरिजीत सिंह की आवाज में जालिमा। अयांग ये दोनों गाने खास आपके लिए।

0: दोस्तों, रोमांस और डांस के बाद अब एक ऐसी रिक्वेस्ट आई है जिसमें नाम तो नहीं है पर जज्बात पूरे हैं। ये लिसनर्स हमें सुन रहे हैं नीति विहार से। उन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया पर उनकी पसंद बता रही है कि वो शाहरुख खान के बड़े फैन हैं। उनकी फरमाइश पर पेश है आंखें खुली हो या हो बंद।
1: दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

स्टाइल में बदलते हैं। हमारे लिसनर मोहम्मद हबीजुद्दीन जी ने हमें मैसेज किया है 6 किलो ईटानगर से। हबी जी पूरे तशन में हैं और उनकी रिक्वेस्ट है बादशाह और बादशाह। तो हबी जी और 6 किलो के सभी लिसनर्स तैयार हो जाए इस एनर्जेटिक ट्रैक के लिए।

0: हैं बादशाह के बारे में आपसे कुछ।
1: अरे रानी, क्या आदमी दिया तुमने मुझे। इसका नाम तो मोती नहीं, सचमुच बादशाह ही होना चाहिए था। किसने कहा है कि कल 4 बजे

दोस्तों प्यार है तो दर्द भी है। अगली रिक्वेस्ट आई है तो कोताया की तरफ से जो हमें दे सकता ईटानगर से सुन रहे हैं। ताया ने थोड़ा इमोशनल होने का फैसला किया है और उनके परमाश चन्ना मिले हैं। ताया दिल थाम कर सुनिएगा ये गाना। अच्छा।

दोस्तों, सुरों का सिलसिला इतना हसीन था और आपके मैसेजेस इतने दिलचस्प कि वक्त का पता ही नहीं चला। दोस्तों, मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे रिक्वेस्ट लाइनअप हैं, पर अफसोस वक्त की अपनी एक पाबंदी होती है और मेरे घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि हमें आज के लिए रुकना होगा। मैं दिल से माफी चाहती हूँ और सभी दोस्तों से जिनकी फरमाइशें आज अधूरी रह गई, पर निराश मत हो जाइए। रेडियो ऑन डिमांड कल फिर लौटेंगे। आप अपनी पसंद के गाने और अपने प्यारे मैसेजेस हमें कल फिर भेज सकते हैं हमारे आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के ऑफिशियल नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिएगा 9436887808।

आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता पीवी देवरी। दोस्तों कहीं मत जाइएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को

0: पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वित्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is participating in the Somnath Amrit Parv 2026. Marking 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga, Somnath Mahadev Temple. Mr. Modi will offer prayers to Lord Somnath, perform the Kumbh Abhishek ritual and later address a public gathering. A roadshow is also being organized. On this occasion, Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi will also remain present. Later in the day, the Prime Minister will travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel around 6 p.m. The project includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and an auditorium. Prime Minister Narendra Modi has urged people not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged from nearly $70 per barrel to around $126 per barrel due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
2: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, ईटानगर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, आज 11 मई है और इसी के साथ चलिए आरंभ करते हैं हमारे आज की दूसरी प्रसारण सभा। इससे पहले यानी कि सुबह के प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे याजू नादा के साथ, और अब आपका साथ देने आई हूं मैं आपकी आरजे बिंदुंग दिंदोमांच। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक L ताली एवं तकनीकी अभियंता नंद कुमार। दोस्तों, चलिए इस प्रसारण सभा की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं हमारे अब आज के यानी कि दोपहर के प्रसारण सभा की रूपरेखा। अब से यानी 11:10 से आप सुनेंगे हमारा खास कार्यक्रम फिल्मी लहर, जिसके बाद दोस्तों 11:30 पर हम आपके साथ शेयर करेंगे वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम यानी पाश्चात्य संगीत का एक मनोरंजक सा सेगमेंट खिदवांग आरान के साथ। दोस्तों, ठीक 12 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 12:10 पर हम लाएंगे नॉन फिल्म सॉन्ग्स का एक छोटा सा सेगमेंट। 12:30 पर आप सुनेंगे हमारा खास कार्यक्रम फौजी भाई और बहनों के लिए गीत माला, जिसके बाद ठीक 1 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। 11:10 पर प्रसारित होगा हेलो फरमाइश का कार्यक्रम, जिसके बाद 11:55 पर लाएंगे हम कमर्शियल ब्रॉडकास्ट। ठीक 2 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार के लिए, जिसके बाद 2:30 पर हम लाएंगे हिट्स ऑफ 90s यानी 90s के दशक के कुछ बेहतरीन हिट सॉन्ग्स। 2:58 पर आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, जिसके बाद 3 आप सुनेंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और फिर तायखामती श्रोताओं का कार्यक्रम। 30:30 पर हम बताएंगे आपको बॉलीवुड अपडेट्स यानी कि फिल्मी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से नए गॉसिप घूम रहे हैं, सारा कुछ बताएंगे आपको बॉलीवुड अपडेट्स में। 3:40 पर प्रसारित होगा वांचो भाषा में समाचार, जिसके बाद 3:45 पर हम सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक छोटा सा प्यारा सा कार्यक्रम। ठीक 4 आप जुड़ेंगे ईदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम से ईदुमिश्मी भाषा में समाचार प्रस्तुत होगा, जिसके बाद 4:05 पर हम फिर लाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक फिल्मी ब्रेक। 4:20 पर प्रसारित होगा तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम तांगसा भाषा में समाचार। और दोस्तों, ये थी आज की हमारे दोपहर प्रसारण सभा की रूपरेखा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम फिल्मी लहर। फिल्मी लहर में आज पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म अजहर से। इस फिल्म में आप देख सकते हैं इमरान हाशमी और प्राची देसाई को। इस गीत को गाया है अरिजीत ने, संगीत के निर्देशक है प्रीतम।

0: जनगणना से जन कल्याण सबका डेटा देश का मान जनगणना से जन कल्याण आपका सहयोग देश की शान अरुणाचल प्रदेश के प्रिय निवासियों तैयार हो जाइए पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 चरण एक मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना की घोषणा की है। ये है भारत की पहली डिजिटल जनगणना।
0: 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
1: 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना प्रगणक डेटा संग्रह के लिए हर घर का दौरा करेंगे।
0: कृपया सही जानकारी प्रदान करें और जनगणना प्रगणकों का पूरा सहयोग करें ताकि प्रभावी योजना और विकास संभव हो सके।
1: जनगणना से जन कल्याण आपकी भागीदारी है जरूरी। जनगणना 2027 मिलकर बनाए एक बेहतर अरुणाचल एक बेहतर भविष्य।
0: जनगणना से जन कल्याण।
2: श्रोता दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। चलिए अब फिल्मी लहर के इस कार्यक्रम में आपको सुना देते हैं अगला गीत। सुनते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, गीत का नाम है देखना तेनु। दोस्तों इस ये गीत है एक रेंडिशन और इस रेंडिशन का ओरिजिनल सॉन्ग है से शावा शावा जिसे गाया था उदित नारायण ने। इस ही गीत का नया वर्जन आज आपको सुनाने जा रही हूँ। नाम है देखा तैनु और फिर इस गीत को गाया है मोहम्मद फैज ने। कंपोजर और लिरिसिस्ट है जानी जी। चलिए सुनते हैं मिस्टर एंड मिसेस माही से देखा तैनू।

दोस्तों, सुनकर आपको तो याद आ ही गया होगा, ये गीत है उस फिल्म के गीत का रेंडिशन, और वो फिल्म है कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आता है शावा शावा, और उसमें एक छोटा सा स्टैंजा आता है देखा तेनु पहली पहली बार, और इसी स्टैंजे को यूज करके ये नया सॉन्ग बनाया है, और बहुत ही प्यारा सा रेंडिशन है, मुझे काफी पसंद है, आशा है आपको भी पसंद आया होगा। चलिए अब फिल्मी लहर में आपको सुनाते हैं अगला गीत, फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से। गीत का नाम है इश्क रिस्क, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे किदवांग आरान के साथ हमारे पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम के लिए वेस्टर्न मेलोडीज, और उसके बाद आप सीधा जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। इससे पहले दोस्तों आप बने हुए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए। अब चलिए आपको सुना देते हैं हमारा कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स। दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम है जहां हम आपको सुनाते हैं वो सारे गीत जो किसी फिल्म का हिस्सा तो नहीं लेकिन हमारे दिल का, हमारे मोमेंट्स का जरूर हिस्सा बन गए हैं। ऐसे गीत जो फिल्म में नहीं बजे लेकिन हमारे धुनों में, हमारे दिलों में आज भी बजते हैं। इस सेगमेंट में सबसे पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है 2000s के सबसे हिट नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर्टिस्ट फाल्गुनी पाठक का एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इंदना विनवा। चलिए सुनते हैं ये गीत और आनंद लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये गीत पसंद आता है और आपको मेरी प्लेलिस्ट पसंद आती है तो आप जरूर मुझे मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 9436887808 और हम आपके लिए इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं उस सभी का सजेशंस, सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं इस नंबर पर। चलिए सुनते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों इंदिरा विनवा फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और हम प्ले कर रहे हैं नॉन फिल्म सॉन्ग्स कुछ हिट। चलिए अब आपको सुनाते हैं दोस्तों लकी अली के बहुत ही प्यारा सा गीत, लकी अली और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, गोरी तेरी आंखें।

0: My Eco, because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, because we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: because it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch SmartPay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
5: दोस्तों चलिए नॉन फिल्म हिंदी सॉन्ग्स के इस सेगमेंट में अब आपको सुनाते हैं अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में उनके एल्बम तेरे बिना से कभी यादों में आओ. आशा करती हूँ कि आप इस गीत का आनंद लेंगे. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक.
6: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं. यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नॉन फिल्म हिंदी सॉन्ग का एक छोटा सा कार्यक्रम। अब वक्त है कार्यक्रम गीतमाला का, एक खास पेशकश उन वीर जवानों के नाम जो सरहदों पर खड़े होकर हम सब की नींद, हमारी आज़ादी और हमारे कल की हिफाजत करते हैं। आज की शाम उन सिपाहियों के नाम जो घर से दूर रहकर भी हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब होते हैं। कभी सियाचिन की बर्फीली वादियों में, कभी रेगिस्तान की तपती रेत पर, तो कभी अंधेरी रातों में सरहद की चौकी पर हमारे जवान बिना किसी शिकायत के देश सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होती, कभी एक माँ के इंतजार में भी होती है, कभी एक बच्चे की अधूरी सवालों में और कभी एक फौजी के चुपचाप मुस्कुरा देने में। और इसी जज्बे को सलाम करता है हमारा पहला गीत गीतमाला के इस कार्यक्रम में। एक ऐसा गीत जो युवा के दिलों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग जगाता है। फिल्म रंग दे बसंती से दोस्तों चलिए सुनते हैं रूबरू हर उस जवान के नाम जो कहता है, जो कहता नहीं लेकिन हर रोज अपनी जान देश के नाम लिख देता है।

दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात क्या है? यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग रीति रिवाज है, अलग रंग है, लेकिन दिल सब के एक साथ धड़कते हैं। कोई मंदिर में दुआ करता है तो कोई मस्जिद में सजदा करता है, कोई गुरुद्वारे में सेवा करता है तो कोई चर्च में प्रेयर करते हैं, पर हर दिल में एक ही जज्बा है, इंसानियत और अपने देश से मोहब्बत। और शायद इसीलिए हमारे फौजी भी सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं करते, वो इस देश की एकता, भाईचारे और हर मुस्कुराते चेहरे की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जब पूरा भारत एक साथ खड़ा होता है तब हर सितारा और भी ज्यादा चमकता है। चलिए इसी बात पे सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो हमें याद दिलाता है कि हम अलग होते हुए भी एक हैं। फिल्म स्वदेश से चलिए सुनते हैं ये तारा वो तारा, हर उस दिल के नाम जो नफरत नहीं मोहब्बत बांटना चाहता है।

दोस्तों, आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज़ादी एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमें सच्चाई, हिम्मत और इंसानियत का रास्ता दिखाती है। और जब भी इस देश की आज़ादी की बात होती है, एक नाम हर दिल में इज्जत के साथ लिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी जी का। बापू ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत हिंसा में नहीं, अहिंसा में होती है। उन्होंने बताया कि अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें खुद पर भरोसा होगा, अपनी मिट्टी पर, अपने काम पर और अपनी पहचान पर। स्वदेशी सिर्फ कपड़ों या सामान की बात नहीं है दोस्तों, वो अपने देश और अपने लोगों से जुड़े रहने का एहसास है। हमारे फौजी भी तो इसी जज्बे का जीता जागता रूप है। अनुशासन, त्याग और देश के लिए पूरी ईमानदारी से खड़े रहना। आज का अगला गीत हमें याद दिलाता है कि इस देश की मिट्टी में हमेशा से हिम्मत बसी है और हर आम इंसान के अंदर एक असाधारण ताकत होती है। चलिए दोस्तों, गीतमाला के इस कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से बहुत ही प्यारा सा गीत, बंदे मैं था दम वंदे मातरम। हर उस वीर को नमन जिसके दिल में देश सबसे पहले आता है।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत, अपने उसूलों और देश के प्रति अपनी सोच के लिए भी अमर हो जाते हैं। सुनील दत्त उन्हीं महान शख्सियतों में से एक थे, एक ऐसे कलाकार जिनके दिल में मोहब्बत थी, सेवा थी और हर इंसान के लिए इज्जत था। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों को जोड़ने का काम किया, अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। और दोस्तों, वक्त ने एक खूबसूरत मंजर भी दिखाया जब उनके बेटे संजय दत्त के साथ उनकी जोड़ी ने मुन्ना भाई की कहानी में दिलों को छू लिया। एक तरफ बाप की समझ और संस्कार, दूसरी तरफ बेटे का दिल से निकला प्यार और बदलने का जज्बा। लगे रहो मुन्ना भाई में महात्मा गांधी जी के विचारों को जिस प्यार और सादगी से दिखाया गया, उसने एक बार फिर हमें याद दिलाया कि सच्चाई, अहिंसा और इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती। चलिए आपको सुनाते हैं अगला गीत। कई बार जिंदगी हमें दुनिया के अलग अलग रास्तों पर ले जाती है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो कभी टूट नहीं सकता। वो रिश्ता है अपने वतन से। देश सिर्फ नक्शे पर बनी एक जगह नहीं है, देश होता है माँ की आवाज, मिट्टी की खुशबू, बचपन की यादें और वो एहसास जो दूर रहकर और गहरा हो जाता है। हमारे जवान भी तो सालों तक घर से दूर रहते हैं, लेकिन उनके दिल में हर पल हमारे अपने देश हिंदुस्तान धड़कता है। दोस्तों, जब हम महात्मा गांधी जी की स्वदेशी और अपने देश से जुड़े रहने के विचार को याद करते हैं, तो ये गीत और भी खास बन जाता है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, अपनी जड़ों की आवाज हमेशा हमें वापस बुलाती रहती है। चलिए सुनते हैं फिल्म स्वदेश से ये प्यारा सा गीत, ये जो देश है तेरा, हर हिंदुस्तानी के दिल के नाम और हर सरहद पर तैनात हमारे वीर जवानों को हमारा सलाम।

दोस्तों, आज के इस गीत माला में हमने सिर्फ गीत नहीं सुने, हमने महसूस किया अपने देश का जज्बा, अपने वीर जवानों का हौसला और उस मोहब्बत को जो हमें एक हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कराती है। सरहद पर खड़ा एक सिपाही सिर्फ देश की हिफाजत नहीं करता, वो हमें सबके सपनों, हमारी जिंदगी, आजादी और हमारी एकता की रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों, देश की जिम्मेदारी सिर्फ फौज की नहीं होती, हर नागरिक की होती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां नफरत से ज्यादा मोहब्बत हो, भेदभाव से ज्यादा इंसानियत हो और हर दिल में अपने देश और अपने देशवासियों के लिए इज्जत हो। क्योंकि एक महान देश सिर्फ इमारतों या ताकत से नहीं बनता, वो बनता है अच्छे इंसानों से। अपने देश से प्यार कीजिए, उसकी मिट्टी से, उसकी भाषाओं से, उसकी विविधता से और सबसे जरूरी उसके लोगों से। इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, हमारा गीतमाला यहीं तक। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जनगणना से जन कल्याण सबका डेटा देश का मान, जनगणना से जन कल्याण आपका सहयोग देश की शान। अरुणाचल प्रदेश के प्रिय निवासियों, तैयार हो जाइए पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 चरण एक मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना की घोषणा की है। ये है भारत की पहली डिजिटल जनगणना।
0: 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
1: 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना प्रगणक डेटा संग्रह के लिए हर घर का दौरा करेंगे।
0: कृपया सही जानकारी प्रदान करें और जनगणना प्रगणकों का पूरा सहयोग करें ताकि प्रभावी योजना और विकास संभव हो सके।
1: जनगणना से जन कल्याण, आपकी भागीदारी है जरूरी। जनगणना 2027 मिलकर बनाए एक बेहतर अरुणाचल, एक बेहतर भविष्य। जनगणना से जन कल्याण।

0: दोस्तों अब वक्त है हमारे खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश की, जहां आपके कॉल्स लेते हैं हम और आपके कॉल्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आपके रिक्वेस्ट्स सभी यही हेलो फरमाइश में। चलिए दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
2: हेलो नमस्कार सर।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आप।
2: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार, डिस्ट्रिक्ट एक काचा आसाम से। जिंदगी में एक दोस्ती बनती है, जिंदगी में एक प्यार बनती है, जिंदगी में एक दिल बनती है।
1: क्या बात है, जिंदगी में एक ही प्यार बनता है और वो सही प्यार होना चाहिए, है कि नहीं? जी देवजीत दास, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए अभी कैसा है आपके वहाँ पे मौसम?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो गुरुवार में अपने आकाशवाणी का नगर में दो बार हेलो फरमाइश रिकॉर्डिंग किया, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब से दो बार होता है रिकॉर्डिंग जी।
2: पिछले हफ्ता तो मेरे दीदी के से बातचीत हुआ।
1: हाँ जी, नोरा जी के साथ आपकी बातचीत हुई थी।
2: हाँ जी। तो मैं आज गाना सुनना चाहता हूँ।
1: हाँ जी कहिए, कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे आप?
2: फिल्म का नाम है दिल वाले।
1: दिल वाले, ओके।
2: और गाने का बोल है जीता था जिसके लिए गाना।
1: जीता था जिसके लिए मरता था। जी जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुना।
2: और ये गाना गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक।
1: जी जी जी जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे देवजीत दास गीत को?
2: पहले मेरा परिवार में गाना सुना है, मेरा पिताजी है जितन कुमार दास और मेरा माताजी है शिल्पकनी दास, बड़े भैया है देवजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को साथ डेडिकेट करूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
2: पहले मेरा आसाम सिरभूमि जलाशय है, मेरे बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य और दीदी है श्वेताबा भट्टाचार्य, और दादा है प्रेमोजी चक्रवर्ती, और कचर से है दादा है जवाहरलाल बर्मन दादा है, और है हैलाकांदी से है दादा राजा मलाकार रामतोबाई, और है दादा है करबुल हक मजुमदार, और है मेरा बहन है लवली दास और बहन है बबली दास, और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे श्रोताओं के लिए गाना
1: सभी को आप डेडिकेट करना चाहिए।
2: बेंगलुरु से है मेरा दादा है मिथुन चक्रवर्ती।
1: तो देवजीत दास, अपने माता पिता को हमारा नमस्कार कहिए और सुनते हैं आपके पसंद का गाना दिलवाले फिल्म से।
2: ये गाना कब बार में सुनूंगा? कल सुनूंगा।
1: कल, हाँ कल FM में 7:35 को और मीडियम वेव में 8 बजे, तो जरूर सुनिएगा और अगली बार भी जरूर कॉल कीजिएगा।
2: दो हफ्ते की बार कॉल करूंगा, मैं श्रोताओं को मौका देना।
1: अच्छा अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने देवजीत दास जी। नए श्रोता जुड़ेंगे हमसे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो आप दो सप्ताह के बाद को जरूर कॉल कीजिए।
2: जी जी नगर में।
1: ओके जी जी जी,
2: तो आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: जी मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, तो अगली बार आप जरूर हमसे जुड़िए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, धन्यवाद सर। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ सर, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी, हमारे नियमित प्यारे श्रोता लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद। बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और अब ये जो गर्मी का जो दौर आता है ना सर, तो ये बहुत काटने को दौड़ता है।
0: जी, ये बात तो सही है।
1: ऐसा लगता है कि ठंडी वादियों में चले जाएं, आपके उधर आ जाएं अरुणाचल प्रदेश में
0: जी,
1: के लिए।
0: क्या बात है, जरूर आइए।
1: चले जाएं कहीं जम्मू कश्मीर चले जाएं, ऐसा लगता है गर्मी
0: हाँ
1: के दिन तो बिल्कुल बहुत अजीब लगते हैं।
0: जी, परेशानी तो होती है। जी जी जी, तो कभी समय मिले तो जरूर आइए अरुणाचल प्रदेश, हम आपको घुमाएंगे।
1: आएंगे भी, बिल्कुल आएंगे। ये तो आपका बहुत ही सुंदर, मतलब मैंने यूट्यूब में मोबाइल में देखा है, मतलब
0: जी जी जी, हाँ जी,
1: बहुत ही अच्छा राज्य है, बहुत ही सुंदर और विकसित और हरियाली से भरा हुआ राज्य है।
0: जी जी जी,
1: प्रत्येक जगह पहाड़ियों पर पेड़ हैं, पौधे हैं, ठंडी हवाएं हैं,
0: बिल्कुल,
1: और बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पर।
0: हमारे यहाँ ईटानगर में तो थोड़ी गर्मी है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ पे अभी भी बर्फबारी हो रही है अरुणाचल प्रदेश
1: जी,
0: में जी, तो कभी आइए, हम साथ चलेंगे घूमने के लिए।
1: आएंगे सर, आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर।
0: जी जी जी जी, हाँ जी, हम बाहें खोले आपका स्वागत करेंगे।
1: जी धन्यवाद।
0: तो बात
1: सर जी, ये गर्मी का जो दौर चल रहा है, आज आपके यहाँ पर जो फोन लगाने की जो मेरी इच्छा थी, उसमें बहुत दिनों से एक गीत को मैंने सोच रखा है।
0: अच्छा जी,
1: आपके यहाँ जब फोन लगेगा तब मैं इस गीत की च्वाइस करूंगा आपसे।
0: जी,
1: वो फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
0: हाँ जी।
1: और गीत के बोल हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए,
0: ओ हो हो,
1: आए या ना आए।
0: जी जी जी, गर्मी के मौसम में तो ठंडे पानी से नहाना ही बेहतर रहेगा।
1: ठंडे पानी से नहाना गर्मी में चाहिए, उससे क्या होता है, जैसे दिन भर के वातावरण में आप कहीं काम पर जाते हैं, गर्मी रहती है, गर्मी वातावरण में आप काम करते हैं, शाम के समय में अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन रहेगा, उससे आपको लू नहीं लगेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे आप।
1: जी सर जी,
0: जी।
1: तो हमारे कुछ मित्र भी हैं, उनके लिए यह गीत डेडिकेट रहेगा।
0: जरूर जरूर, हाँ जी।
1: तुकाराम जाधव जी हैं, करणवीर पॉल जी हैं, सोनू जी पंजाब से, हमारे मित्र गौतम राय बोले जी हैं, राम बाबू मालवी जी भोपाल से, सुनील

0: झा जी हैं भोपाल से, ये भी हमारे मित्र हैं, योगेश जी भी हैं हमारे मित्र, और हमारे एक बहुत ही आपके उधर के मित्र हैं अर्जुन प्रधान जी,
1: जी
0: उनसे
1: जी
0: मेरी चर्चा होती रहती है फोन में, बहुत अच्छे मित्र हैं, और ये आकाशवाणी के लिए ये भी गीत रहेगा, ठंडे ठंडे पानी से
1: नहाना चाहिए। ओके लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर आपका भी स्वागत कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से श्रीकांत जोशी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुनाइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, और एक महीने के अंतराल में आज कॉल किया सर।
0: जी आपने श्रोताओं को मौका देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और पिछले महीने में रिचार्ज भी नहीं था, इसलिए नहीं कॉल किया।
0: अच्छा, रिचार्ज नहीं था। ओके जी जी, कोई बात नहीं। हाँ, जब भी रिचार्ज रहेगा तो आप जरूर कॉल कीजिएगा।
1: जी सर, प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, कॉल नहीं करते फिर भी आप प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ, प्रोग्राम।
0: क्या बात है जी जी जी।
1: रेडियो से जानकारी मिलती है ना, समाचार जी सुनते, साथ में मनोरंजन भी करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी।
1: हाँ सर, और आपके यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर भारत में। महाराष्ट्र में इतनी नहीं है, गर्मी के दिन चल रहे हैं आप।
0: ओके जी जी जी, गर्मी से थोड़ा अपने को बचा के रखिए।
1: मैं रेडियो सुनना और गाना सुनकर मनोरंजन करना ही हमारा काम है अभी।
0: ओके जी जी, बहुत ही अच्छी बात है, घर के अंदर रहिए ताकि आप लू से बच रहे हैं। जी तो श्रीकांत जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: मुझे मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गाना सुनने का है। उसने खुद अपने जो अभिनेता अमिताभ बच्चन है ना, उनके आवाज में गाना है वो, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
0: एक किस्सा सुनो। ओके जी जी जी,
1: पानी का किस्सा ऐसा है ना, वो गाना सुनने का है।
0: जी जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर तो पहले आपके लिए सुनाऊंगा, और उसके बाद जो हमारे पप्पूराम घाट है हरियाणा से, उनके बाद मनोज कुमार चित्र सिंह जी उड़ीसा से कॉल करते उन लोगों के लिए, और अनुज कुमार भट्टाचार्य, सत्यपा भट्टाचार्य उनके लिए।

0: जितने भी दोस्तों प्रोग्राम सुनते हैं उन सब के लिए सर।
1: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: जी हाँ
1: जी। श्रीकांत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
0: धन्यवाद सर।
1: ओके धन्यवाद।
2: मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, कई साल पहले की ये बात है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपता, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ
2: हेलो फरमाइश।
3: जी सर नमस्ते।
2: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी थैंक यू सो मच। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
2: प्रेम सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हैं आप?
3: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैं ईटानगर के।
2: ओके जी जी जी जी बहुत ही अच्छा लगा।
3: आपसे लगते कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग।
2: अच्छा जी जी जी जी
3: जी उसकी एक खासियत बताऊँ सर आपको मैं?
2: जी जरूर जरूर। हाँ जी
3: जी। सबसे पहले तो इसमें अलग अलग श्रोता अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, उसके बाद में अपनी बातें बताते हैं जो बड़ी रोचक होती है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: और इससे हमें हमारे दोस्त भी काफी मिलते हैं, एक दूसरे को बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में बताते हैं और उनके राज्य के बारे में बताते हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगता है।
2: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रेम सिंह जी। तो अब से आप भी हमसे जुड़ते रहिए और अपने बारे में आप श्रोताओं को बताइए।
3: जी मैं बताऊं सर, मैं खेती किसानी का काम, गेहूं की अभी फसल लगाई थी हमने तो उसको तो हम काट के घर ले आए एक महीने डेढ़ महीने पहले।
2: ओके।
3: अभी कुछ समय के लिए खेत को खाली कर दिया है, जब बरसात होगी तो हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
2: ओके जी जी जी
3: जी। और बताओ सर, काफी अच्छा एरिया है हमारे यहाँ पे, बड़े बड़े खेत है लोगों के, मैदानी इलाका है और मतलब पेड़ पौधे भी है, बगीचे भी है। मतलब बगीचे लगा के काफी लोगों ने। जी हाँ सर।
2: ओके।
3: और मतलब पानी की भी अच्छी उचित व्यवस्था है सिंचाई के लिए और पीने के लिए भी मीठा पानी उपलब्ध है।
2: ओके वाह वाह वाह क्या बात है।

0: ये बहुत ही अच्छी जगह पर आप रह रहे हैं, कभी मौका लगे तो हम जरूर आएंगे घूमने के लिए।
1: जी बिल्कुल, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन की इच्छा पूरी करके जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: महाकालेश्वर की तो अभी जैसे आपको पिछले जब महाशिवरात्रि आई थी ना,
0: ओके जी
1: जी, उस समय पे काफी मतलब धूम थी, वहाँ पे मेला भी लगा था महाशिवरात्रि का। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके लग्न में मतलब शादी में थोड़ी समस्या आती है ना, जो महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोले के दर्शन कर ले तो उनके मतलब शादी होने के योग जल्दी मिल जाते हैं,
0: ऐसी
1: मान्यता है वहाँ पर।
0: जी जी जी जी, जी बिल्कुल अच्छे जी।
1: और जैसे भी सावन का जो महीना आता है ना, तो उसमें तो वहाँ पर मतलब रेगुलर इतने श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, कांवड़ यात्री आते हैं और महाकालेश्वर बाबा का जलाभिषेक करते हैं।
0: ओके जी जी जी जी, ओके प्रेम सिंह जी, अपने बारे में और अपने जगह के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी आपने हमें, तो बातचीत तो जारी रहेगी। चलिए कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: जी सर, फिल्म का नाम है कोयला और गाने के बोले देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मर न जाऊं कहीं।
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी हमारे दोस्त हैं लोकेंद्र वर्मा, भगवान सिंह शर्मा, केसरी सिंह राजपूत, तुकाराम जाधव।
0: तो प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको आपके पसंद का गाना कोयला फिल्म से सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार, मैं जवाहरलाल वर्मन काठाड़ जिला से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ सर, थैंक यू सर। आप और कैसे आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर।
0: ओके बढ़िया। और मौसम?
1: जी हाँ जी हाँ, आज हेलो फरमाइश में
0: जी
1: महान गीतकार गुलशन बाबरा जी का लिखा हुआ एक गाना सुना दीजिए।
0: ओके जी जरूर सुनाएंगे।
1: महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी का सुर में सजाया हुआ वो गाना, आशा जी और किशोरदा के जुगल सर में।
0: क्या बात है जी।
1: खुल्लम खुल्लम प्यार करेंगे हम दोनों, ये गाना सुना दीजिए।
0: जरूर सुनाएंगे। और
1: खेल में फिल्म से ये गाना
0: जी जी हाँ जी, खेल खेल में फिल्म का गाना जी जरूर सुनाएंगे।
1: गीतकार गाना लिखते हैं और संगीतकार गाना में सुर डालते हैं
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके बाद गीत बनते हैं।
0: हाँ जी।
1: वो गीत कौन गायक गायिका गाएगा की गाने के लिए गीतकार और संगीतकार जी ने गायक गायिका चुनते हैं।
0: जी जी जी।
1: हर गाना को पीछे गीतकार और संगीतकार का महान भूमिका रहते हैं।
0: बहुत सही बात कही आपने जी
1: जी। हाँ जी हाँ, एक गाना लिख के पीछे बहुत सारी बातें रहते हैं, बहुत सारी कहानी भी रहते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: गीतकार और संगीतकार का बिना कोई गीत नहीं बनता,
0: नहीं बन सकता जी।
1: जी हाँ जी हाँ
0: बिल्कुल।
1: इसलिए मैं मेरा फरमाइश में महान गीतकार और संगीतकार को विनम्र शब्द से हमेशा याद करता
0: हूं। जी आप हमेशा याद करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है जी।
1: हाँ सर जी हाँ, मुझे गाना सुना दीजिए। डेडिकेट तो करने चाहता हूँ मैं पहले आपके।
0: धन्यवाद जी जी।
1: और प्रेमजीत भैया है और आशुतोष देवनाथ है और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए,
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं जी।
1: जी हाँ जी।
0: जवाहरलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ सर, थैंक यू।
0: ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद सर
0: जी,
1: बहुत अच्छे हैं। गर्मी का मजा ले रहे हैं सर।
0: अच्छा, गर्मी का मजा ले रहे हैं। जी जी, ये भी बात सही है। ठंडी का जैसे हम मजा लेते हैं, उसी तरह से गर्मी का भी मजा,
1: का भी आनंद लेना चाहिए।
0: हाँ जी, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। और अभी क्या चल रहा है जिंदगी में?
1: बस दुकान पर बैठे हैं।
0: अच्छा जी,
1: आज सर हम सुनेंगे तोतन की बेटी।
0: ओके जी,
1: इसका गीत है कौन सुनेगा किसको सुनाए।
0: कौन सुनेगा किसको
1: सुनाए,
0: इसीलिए चुप रहते। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है। मगर चुप क्यों रहना है ओम प्रकाश जी, बात तो करनी है।
1: कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें चुप रहना बहुत अच्छा रहता है।
0: जी जी जी, कभी कभी चुप्पी भी अच्छी होती है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे ओम प्रकाश जी इस गीत को?
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी है और तेज सिंह अग्रवाल जी है, बहुत से दोस्त है सर।
0: अच्छा,
1: दोस्तों के साथ सुनना चाहती
0: हैं। ओके, सभी दोस्तों के साथ आप इस गीत को सुनना चाहते हैं?
1: आप भी हैं सर उसमें?
0: जी जी, मैं तो जरूर सुनूंगा ही आपके साथ। जी, जी तो ओम प्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी,
1: हेलो
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर
0: जी, नमस्कार।
1: मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ सर, पाकुड़ झारखंड।
0: जी उत्तम जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें याद किया।
1: जी सर, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और इधर मतलब फोन भी मतलब लगाने में थोड़ा सा बिजी आता है।
0: ओके ओके जी जी, बात तो सही
1: है।
0: ओके, चलिए, बिजी होते हुए भी आपने आज हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर।
0: ओके,
1: आप कैसे हैं आप लोग?
0: जी हम भी बहुत ही बढ़िया हैं, मजे में हैं।
1: जी सर,
0: जी, और अपने वहाँ का मौसम का हाल कैसा है?
1: मौसम तो इस बार सर मतलब जैसे मतलब गर्मी बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है।
0: अच्छा जी,
1: जैसे भी गर्मी 2-3 दिन से धूप तो किया हुआ था, फिर बारिश, मतलब अभी मौसम बहुत ठंड है।
0: अच्छा,
1: 25-28 डिग्री सेल्सियस होगा अभी।
0: ओके, बढ़िया बढ़िया, फिर तो यहाँ पे भी वैसा ही मौसम है।
1: हाँ,
0: ज्यादा गर्मी नहीं जा रही,
1: पहाड़ी एरिया है तो फिर वहाँ तो लगता है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा ही रहता
0: है। जी जी जी, ओके, तो बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। कहिए, कौन सा फिल्म का गीत आज सुनाया आपको?
1: आज आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना, इसका टाइटल सॉन्ग है, वही आप सुना दीजिएगा।
0: ओके, टाइटल सॉन्ग ही आप सुनना चाहते हैं, और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे इस गीत को?
1: बस हमारे जितने भी श्रोता लोग हैं सुनते हैं।
0: ओके,
1: सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। जी तो उत्तम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी। सर, जिला विदिशा तहसील नटेरी ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ।
0: ग्राम मोहब्बतपुर और मोहब्बत भरी आवाज में कॉल लगाया।
1: जी बिल्कुल सर। जी अब अभी ड्यूटी पे ही हूँ और ड्यूटी से ही कॉल कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, ड्यूटी पे रहते हुए भी आपने हमें कॉल मिलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर, आपके लिए भी। और क्या काफी दिन बाद कॉल भी मिलने को मिला है, आपसे बात करने को भी काफी दिन बाद मौका मिला है।
0: जी हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने हमें याद किया। और आपके वहाँ

0: बढ़ाना है
1: धीरे धीरे
0: धीरे धीरे
1: प्यार को बढ़ाना है। जी, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत?
0: पहले नंबर सर आपके लिए, उसके बाद दोस्त है प्रदीप साहू जी है, नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, मंगीलाल चंदेल जी है, और आसिफ खान मंसूर जी है, भानु महफिल जी है, और जितने श्रोता सुन रहा है उन सभी के लिए रहेगा।
1: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो रवि जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
0: थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, खम्मा घनी।
1: भवानी सिंह राठौड़ अर्ज कर रहा हूँ सुजानगढ़ से, राजस्थान से।
0: जी, अर्ज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल बढ़िया हूँ सर।
0: बढ़िया है, ओके,
1: बिल्कुल। और आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं तो और ही बढ़िया हो जाते हैं।
0: क्या बात है। जी जी जी,
1: आपने प्रसारण शुरू कर दिया, डबल प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं और फिर उनको रिपीट ब्रॉडकास्टिंग भी होता है।
0: हाँ जी, रिपीट भी होता है। जी जी,
1: प्रयास आपका बिल्कुल। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ महाराज जी आपको।
0: हाँ जी जरूर।
1: एक ये जो ऑल इंडिया में जितने भी आकाशवाणी के केंद्र है, सबने सोशल मीडिया पे अपने पेज बना रखे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आईडीज बना रखी हैं, तो जिसमें कुछ विशेष आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे फोन इन, कोई और प्रोग्राम, कोई ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहता है, या
0: जी,
1: फिर
0: जी,
1: कोई हेल्थ पे जुड़े प्रोग्राम, उस पे अगर आप अपडेट डालते रहे, मतलब रोजाना के जो कार्यक्रम विवरण होता है या फिर कोई विशेष प्रोग्राम होता है,
0: जी जी,
1: तो उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लिसनरों के ध्यान में रहेगा। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम से लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं।
0: नहीं, हमारा भी है सोशल मीडिया, हमारा सेल है, वहाँ लोग हैं, वो लोग डालते रहते हैं।
1: हाँ, तो वो आप चैनल बताइए किस तरीका का है, क्या नाम है, तो
0: अच्छा,
1: कि ज्यादा से ज्यादा लिस्टनर जुड़ सके।
0: जी जी जी, ये तो बहुत ही अच्छे सुझाव दिए आपने। जी
1: बिल्कुल, जब भी अगला प्रोग्राम आप पेश करो, जब भी करो, या फिर आज का प्रोग्राम लास्ट में थोड़ी अगर आपके पास अपडेट हो तो आप जरूर बताएंगे, उससे क्या ज्यादा से ज्यादा लिस्टनर जुड़ने का मौका मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इच्छुक होता है इन प्रोग्राम के, तो उनको भी मौका मिल सके जुड़ने का।
0: जी, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए आपने, हम इस पर जरूर अमल करेंगे और हमारे जो कार्यक्रम है उसे हम अपडेट करते रहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल सर।
0: जी जी,
1: और आज गाना आज लता जी की आवाज में सुना दीजिए। अजनबी कौन हो तुम, सबसे तुमने देखा है।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, और किन लोगों के साथ सुना था
1: ये है? अनजान लोगों से मिले थे, अपने बन के बैठ गए।
0: जी जी जी, हाँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये रेडियो का अपनापन है ना।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, कहाँ मैं कहाँ, लेकिन दिलों का जो रिश्ता है वो मजबूत है।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के जरिए हम सभी जुड़े हुए हैं। तो किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इसके?
1: तमाम सुनने वालों को, आपको, तमाम सुनने वालों को डेडिकेशन।
0: अच्छा, सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो भवानी सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद आपका भी कॉल शामिल करने के लिए।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी
1: जी कैसे? हाँ,
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: ओके, और मौसम कैसा है आपके वहाँ?
1: मौसम अभी तो धूप चल रहा है सर, अभी धूप निकल रहा है यहाँ का मौसम।
0: अच्छा,
1: वहाँ का कैसा है अभी?
0: जी हमारे यहाँ पे तो बारिश हो रही थी।
1: अच्छा अच्छा, बारिश हो रही
0: जी, हल्का फुल्का। जी जी, हम बारिश का मजा ले रहे हैं और आप धूप का मजा ले रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे प्रिय श्रोता अर्जुन जी सिक्किम से कॉल कर रहे हैं।
1: सिक्किम से?
0: जी मैं ही आपका परिचय दे देता हूँ इस बार।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: जी बिल्कुल। अभी तो आप लोगों का ये रिकॉर्डिंग का टाइम बहुत ही अच्छा बनाया है।
0: जी जी हाँ,
1: है ना?
0: जी सप्ताह में दो बार होता है।
1: सप्ताह में दो बार?
0: जी जी
1: है ना?
0: जी जी, मंडे और थर्सडे को। जी
1: थर्सडे को?
0: जी जी जी। तो ये प्रोग्राम जो है कल बजेगा शाम को FM में 7:35 को और मीडियम वेव में 8 बजे।
1: जी जी, और मोबाइल ऐप में भी 8 बजे।
0: हाँ जी हाँ जी, मोबाइल ऐप में 8 बजे ही आएगा।
1: जी
0: जी, जरूर सुनिएगा।
1: तो
0: कहिए कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: आप सुना दीजिएगा ये कौन सा फिल्म था? फिल्म का नाम तो पता नहीं है।
0: कोई बात नहीं, गाने के बोल बताइए।
1: गाने हैं गोरे गोरे मुखरे में काले काले
0: काला काला चश्मा। ओके ओके जी, धूप का मौसम है तो काला चश्मा लगाना ही पड़ेगा।
1: काला चश्मा तो पहनना
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी सबसे पहले आपके लिए
0: जी धन्यवाद
1: दोस्त मुल्तान लोधी जी, कजस लोधी, ओम प्रकाश जी है, भवानी सिंह राठौर जी है, दीपेन कटारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, और अविनाश त्रिपुरा से भगवान सिंह वर्मा जी है, लोकेंद्र वर्मा है, और हमारे अनुप भैया है, सुभाष भट्टाचार्य जी है, शारदा प्रसाद प्रजापति है, ब्रश रेडियो सदा संघ से, और आशुदेव देवनाथ, संजय देवनाथ, और जितने भी तमाम दोस्त सुनते हैं कॉल करते सभी के लिए दिल से
0: सभी को। जी जी जी ओके। तो अर्जुन जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी जी, आपका भी धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: सुपीरियर हैंडलिंग स्टाइलिश लुक एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ब्रेजा कम्स विद सुपरस्टार 9 इंच स्मार्ट टेप रो प्लस विद सराउंड सेंस बाय आर्कमिस इट हैज 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री कैमरा व्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक सनरूफ स्पेशल सेफ्टी फीचर्स लाइक 6 एयरबैग्स एबीएस ईएसपी एंड ऑल्सो ऑफर्स अट्रैक्टिव माइलेज टू 19.89 किलोमीटर पर लीटर इन पेट्रोल एंड 25.51 किलोमीटर पर केजी इन सीएनजी गेट अट्रैक्टिव ऑफर्स अप टू ₹55,000 ऑफर टिल स्टॉक लास्ट्स विजिट योर नियरेस्ट मारुति डीलरशिप टुडे टीएनसी अप्लाई
2: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon-R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: रोशनी।
1: दोस्तों अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर।
2: Afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing, also launches Ayushman Bharat Health Scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
3: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong for a long time only when it stays connected to its roots. He said no power in the world can make India bow down or suppress it. On National Technology Day, Prime Minister said on this day the first 3 nuclear tests were conducted and the country's scientists showcased India's capabilities to the entire world. He said these tests demonstrated to the world just how unwavering the country's political will truly is.
3: देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
2: Earlier this morning, Prime Minister Modi arrived at Prabhaspatan and held a 1 km road show up to Hamirji Gohil Circle.

0: financial year for operationalization of the new framework across the country. More from our correspondent.
1: The Viksit Bharat Jiramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Jiramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. With Deependra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: To encourage greater participation of women workers, the Viksit Bharat Jiramji Act incorporates an important provision for childcare support at work sites. A woman worker will be appointed to take care of the children wherever five or more children below the age of five are present. Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting of the informal empowered group of ministers constituted to monitor the situation in West Asia. The meeting was held to review the evolving situation in the region. Union ministers Jagat Prakash Nadda, Hardeep Singh Puri, Sarbanand Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh and K. Ram Mohan Naidu attended the meeting. In Himachal Pradesh, six people were killed and four others, including two children, were seriously injured when their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Bhatiyat area of Chamba district. The injured have been admitted to Tanda Medical College. Among the deceased, five were tourists from Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district in Himachal Pradesh. The accident occurred in the wee hours today. SP Chamba Vijay Saklani said it was raining heavily in the area at the time of the accident. He added that rescue and relief operations were launched immediately after the incident. Police are investigating the cause of the accident. The country's economy has stayed resilient despite global headwinds. According to an SBI research report released today, the economy is projected to grow by 6.6% in the fiscal year 2026-27. The report also estimates real GDP growth at nearly 7.2% in the fourth quarter of the last fiscal year. National Technology Day is being celebrated today. On this day in 1998, India successfully tested its nuclear bombs in Pokhran, Rajasthan. The day celebrates the country's scientific achievements, technological advancements, and growing innovation ecosystem. More from our correspondent.
2: This day serves as a reminder of the significant role that technological advancements play in the country's progress and development. It memorializes the contributions of scientists, engineers and innovators to India's technological expertise and the launch of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. It also memorializes the sixth global nuclear test, demonstrating India's global position. National Technology Day aims to highlight the role of technology in daily life, encouraging youth interest in science and technology. The day also raises awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा
4: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके
3: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे
4: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया
4: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी अनेक प्रकार के बंधन लग गए उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
5: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
3: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
4: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
7: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
3: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, यानी कि मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। अब वक्त है दोस्तों हिट्स ऑफ 90s का। हमारा वक्त है यादों के उस हसीन सफर पर चलने का, जहां कैसेट रिवाइंड होती थी, रेडियो की आवाज पर दिल झूम उठता था और हर गली हर मोहल्ला 90s के गीतों से महका करता था। 90s का दौर सिर्फ एक डेकेड नहीं था, वो एहसासों का जमाना था। मोहब्बत भी सुरों में थी, दोस्ती भी गानों में थी और जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात को फिल्मी धुनों ने और खूबसूरत बना दिया था। इसी दौर ने हमें दिए अनेक अमर गीत, कभी कुमार सानू की मीठी आवाज तो कभी उदित नारायण की मासूमियत, कभी आलका याग्निक की सुरीली अदाएं तो कभी सोनू निगम की दिल छू लेने वाले गायकी। और दोस्तों 90s के गीत आज भी सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर उन्हीं हसीन लम्हों को जीने के लिए, क्योंकि शुरू हो रहा है हिट्स ऑफ 90s। चलिए सुरों और यादों के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत से, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में। सुनते हैं फिल्म अंजाम से बड़ी मुश्किल है।

0: मैडम, मिस्टर भाटिया दिल्ली वाली फैक्ट्री बेच रहे हैं, अगर वो फैक्ट्री हम खरीद लें तो बहुत फायदा होगा।
1: वो तो ठीक है, मगर मुझे विजय से बात करनी होगी, और वो लंदन से एक हफ्ते बाद आ रहे हैं। तू लंदन नहीं गया?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: ऐसे आओ।
1: ये क्या हो गया?
2: किसी से टकरा गया था, वहाँ चोट लग गई, बहुत ही मजा आया।
1: विजय, ये क्या दीवानापन है?

दोस्तों, 90s का म्यूजिक सिर्फ दिल को छूने वाला नहीं था, वो सपनों को पंख देने वाला भी था। उस दौर के गानों में रोमांस भी था, एनर्जी भी थी और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का जज्बा भी। और जब बात हो ग्रैंड म्यूजिक, खूबसूरत विजुअल्स और यादगार धुनों की, तो यार रहमान का नाम अपने आप दिल में उतर आता है। अब जो गीत हम लेकर आए हैं, उसमें है दुनिया की खूबसूरती का एहसास, जवानी का जोश और जिंदगी से खुलकर जीने की चमक। फिल्म जींस से चलिए सुनते हैं हरिहरन की आवाज में अजूबा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वंचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अब वक्त है एक ऐसे म्यूजिकल सफर का, जहां हर गीत में मोहब्बत की खुशबू है, यादों की नमी है और दिल को छू लेने वाले जज्बात है। मौसम एक ऐसी फिल्म है जिसके गीतों ने प्यार, जुदाई और इंतजार को बहुत खूबसूरती से सुरों में पिरोया था। पंकज कपूर के डायरेक्शन और शाहिद कपूर और सोनम कपूर की परफॉर्मेंसेस के साथ साथ फिल्म का म्यूजिक भी लिसनर्स के दिल में अपनी खास जगह बना गया। और जब म्यूजिक की बात हो और उसमें प्रीतम के सुर और इरशाद कामिल के अल्फाज शामिल हो, तो हर गाना एक एहसास बन जाता है। तो दोस्तों अब किसी रुकावट के बिना तैयार हो जाइए प्यार और यादों से भरे एक खूबसूरत म्यूजिकल सफर के लिए। पेश है मौसम के गीतों का एक नॉनस्टॉप म्यूजिक रिले। सुनते रहिए और महसूस कीजिए हर मौसम का रंग।

दोस्तों चलिए अब लेते हैं एक समाचार ब्रेक। आप सुनेंगे इदु मिश में श्रोताओं का कार्यक्रम इदु मिश में भाषा में समाचार। समाचार के बाद हम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लिया है पोस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ।

ए चा आकाशवाणी ईटानगर शुअलापुची जिहलो के आसुली नी ऐतनची ईदमिसमी आहोला के जी दरगालंबो इंडिया में आती हेता तोपाने ओ टेक्नोलॉजी जन्या इंजीनियर आलम रूम में तांदो एही मिही एगातुने इनु मामरों के इनु कपी माचिनु शुअलापुची जिहों यू माचिनी राजस्थान माची पोखरण अपिलिकुने स्माइलिंग बुद्धा अमुमाने न्यूक्लियर आपोची ऐदोने इनु मामरों के किन्हों यू माचिनु शुअलापुची जिहोलो के ने जिहोलो सो माचिनी आ मने न्यूक्लियर आपोची गाजिगा साइंटिस्ट आलम रूम में आरोगा बता ने Prime Minister Narendra Modi me etani National Technology Day ini enaga machi ni lahirada ahoga nalagan machi dreams tamako manem achahone ehando iyalo machi mingi ge IBLG PTCA operation ega bacha hai ngo khwa babda ne Chief Minister Pema Khandu me nalagan ne ikisha NGO plus tin jona li nana ega ne chahon li ba ऐसा मिंग अली ऑपरेशन एगा ने चीफ मिनिस्टर में लगाता होगा निशीमु में हसी ठुगा चाची पुआ इन्हीं के बने नेतम थमसुर दुकुम आखा इधो ने आची पुआ नशा आज तेलाची बुनी इटन गर्मा ने एक गामा होम मिनिस्टर ममा ना तुम में अतु बता होगा आ प्रोग्राम ने निशीमु में इसी इन गाजा कल्चर ये चु बुझगा बिता ने ना तुम में लाइव बता आओगा बुनी वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट रूपा आंटी को ने बु अन्य हो खेनी लेना बा कियोरोगी दो ने बु हलो के लेना बा पुम्से स्टेट लेवल टाइक्वांडो चैंपियनशिप अखगा माने अरुणाचल प्रदेश मचे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई हारो मैम हुलुयों गोल्ड ताहो सिल्वर दोनों मांगा ब्रांच मेडल आने का ने चैंपियनशिप आने का बता होगा आया तो गोमा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में होला हर गोल दोनों अन्य हो सिल्वर आने का बमा हो सांगलाडेंस स्पोर्ट्स अकादमी में होलमा गोल होलमा सिल्वर दोनों किन्हीं ब्रांच मेडल आने का बता ने अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी लिखा रुबिन में ला होगा अन्य डिस्ट्रिक्ट तोने काफी स्कूल में ची माह तारों ने असुरों का नी नया नंबर में तारों बगाए बा चैंपियनशिप अखंडोगा माची नी क्लब तंग एमएलए सेतान चंबे में कार्य है ताशाय बने अरुणाचल प्रदेश में ची ताइकों तो पूम से तारों या में अधिकार उतार बा में पांबा ऐगाए बा अतुजी दान लाए बा दा आहोगा आ महो आ चैंपियनशिप मने लेपराडा डिस्ट्रिक्ट में ची दोकी बासार में कपड़ों का नी कीजी आंदो वाचे एमगामा ने गोल्ड मेडल आने आई तो ने बेस्ट कियोरोगी फेमेल एथलेट अवार्ड हंगा बचा है प्रांप्रभिता ने बसार एमएलए न्याबी जीनी दिर्ची में लगाता होगा असम तेजपुर माचे एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स को कमाने के अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी में बुनी मैकडोंग आतिको ने हुनी का बने कॉम्बाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप अखंडोगा बता होगा एनसीसी आलम रूम में अरुणा तो चंगा इवे इमु लाने वे जो तंगो इवे इधर ने आतिक के पा अकाकुए चिपो ट्रेनिंग आई तो है बता ला होगा इंडिया में कपिन हो कपिन पा ऐसा नहीं हुआ ने गुजरात में जो गांधी नगर में ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ मगा अकप लम बता आ होगा ऐसा लापूची जिहोलों माच निलीपा अखगाय बो एमगामा अनिहु यु अतिमाचे माउ इहु हु वाया में एमन बेगा मुदा आहोगा महो आया मने अब कॉमनवेल्थ गेम्स तो ने एशियन गेम्स तार मगामा एमन बेया इमु केजिगा होता लगा पेंडो हु वाया इमु आहेया अतिमा इंडिया चाइना तो ने श्रीलंका में हु वाया इमु होला होता आहेगा बमहो चाइनीज टाइप में हुआ इमु हलमा आएगा बता होगा ऐसा नीचे ईद मिसमी आहो अलीमाओ दबाए ऐचा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नाले ईद मिसमी प्रोग्राम में ऐचंता आशे अनुसो किया माहो ऐसा नहीं है ना और रिज्यूमे कुछ चाशे ची आहो जी

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ईदू मिश में श्रोताओं का कार्यक्रम ईदू मिश में भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और दोस्तों अभी हम इससे पहले सुन रहे थे फिल्म मौसम का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले, और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था समाचार का। चलिए अब वही से शुरू करते हैं जहाँ हमने लिया था पोज, और एंजॉय करते हैं फिल्म मौसम का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। आशा करती हूँ कि आप आनंद ले रहे हैं दोस्तों।

दोस्तों फिल्म मौसम का नॉनस्टॉप म्यूजिकल रिले आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के दोपहर की प्रसारण सभा के आखिरी पड़ाव पर। आशा करते हैं कि आपने मेरे साथ ये प्रसारण सभा एंजॉय किया, क्योंकि मुझे तो काफी पसंद आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली एवं तकनीकी अभियंता नंद कुमार, और मैं थी आपकी आरजे मंच। दोस्तों अब आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए हमारे अगले आरजे नीलम थापा पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। तो मुझे यानी आपकी रेडियो साथी बिंदुं बिंदुं मंच को दीजिए इजाजत। मैं आशा करती हूँ आपका शाम सुहाना हो और आप हमेशा सेहतमंद रहे दोस्तों, और बने रहिए आप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। वैसे मौसम कभी बारिश कभी धूप के कारण बहुत तकलीफ में है, तो अगर आप प्रोन है टू कोल्ड एंड फीवर, मैं आपसे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बचकर रहे, मास्क पहने, अपने आप को गर्म रखे, गर्म पानी पिए, क्योंकि मेरी भी हालत खराब है तो मैं नहीं चाहती कि आपकी हालत खराब हो। तो दोस्तों इसी के साथ बाय बाय, शुभ दिन।

0: pang beliong beli pang tungkang nang afang lag Gujarat nang Gandhi Nagar ha nang macau sama tatung re perwang macau ling rangsas net tari atak tatung chi Asia nang ajung weightlifting competition aru nang kura macet khak mungta mang warasya sira wamasya say khak khilari heng ralong chi ngorok te perju thokwani chi Commonwealth Games manai Asian Games ma qualified kayang modop machewang competition po aring jangrung mo phantu ira competition nang India nei China ra Sri Lanka mungtam phang kamo wasir kor kajoy relong khiladi heng relong chi par ma Chinese Taipei mung ra wasir banga khiladi thalong chingo ro de rungrang itana thumra
1: अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार. तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और शाम की इस प्रसारण सभा में, जी हां श्रोता मित्रों, आपके साथ है आपकी अपनी फ्रेडी साथी नीलम। श्रोता मित्रों, शाम की इस सफर की शुरुआत करने से पहले आरजे मंच का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चलिए अब इस प्रसारण सभा की, यानी कि शाम की प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

श्रोतमित्र, आज 11th मई है। जी हाँ, और आज के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। भारत के वैज्ञानिक, तकनीकी और सामरिक उपलब्धियों की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। जी हाँ श्रोतमित्र, पोखरण परमाणु परीक्षणों की ऐतिहासिक सफलता का प्रतीक है आज का दिन, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। जी हाँ श्रोता मित्र, आज हम इस दिवस के बारे में यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में जानेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का पहला गीत परमानु द स्टोरी ऑफ पोखरण फिल्म से। जी हाँ, ये गीत सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि इस गीत को आवाज दी है ज्योति का तंगड़ी तंगाड़ी और कीर्ति सगाथिया और अन्य साथियों ने। तो चलिए श्रोता मित्रों, आगे कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में तीन सफल परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। इसके दो दिन बाद यानी कि 11 के दो दिन बाद 13 मई को दो और परीक्षण किए गए। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत को विश्व के उन गिने चुने देशों की सूची में ला खड़ा किया जो परमाणु हथियार रखने की क्षमता रखते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन को मान्यता देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज के दिन यानी कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया। जी हां श्रोता मित्रों, 11 मई 1998 को घटित प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं पोखरण

परमाणु परीक्षण, हंस 3 स्वदेशी हल्के विमान की पहली उड़ान, त्रिशूल मिसाइल अल्प दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। इन उपलब्धियों के कारण ये दिन भारत की वैज्ञानिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का अगला गीत। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण इसी विषय पर आधारित फिल्म है। तो लीजिए प्रस्तुत है इसी फिल्म का अगला गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्स पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का। जी हाँ श्रोता मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और शोधकर्ताओं को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने भारत को तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्रीय बनाने में योगदान दिया। ये दिवस भारत की वैज्ञानिक हिम्मत, नवाचार और रणनीतिक दृष्टिकोण का

प्रतीक भी है। ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि भारत कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता हासिल कर सकता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस न केवल हमारे गौरवशाली अतीत का उत्सव है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए सफलता खोजने की प्रेरणा भी है। तो चलिए, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत।

0: श्रोता मित्र, आप इस आखिरी गीत को सुन रहे थे सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म से मेघना मिश्रा की आवाज में। और आपको फिर से एक बार बता दें कि आज हमने बात की नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर, और इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आगे आप सुन पाएंगे बारी बारी से समाचार हिंदी एवं अंग्रेजी में, और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे।

0: अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI नाहरलगन ने अरुणाचल प्रदेश के रूपा स्थित वांगडी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुई 29वीं क्योरोगी और 11वीं पुमसे राज्य स्तरीय टाइकोंडो चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले के दागिर बासर ने रूपा स्थित वांगडी इंडोर स्टेडियम में आयोजित अंडर 42 केजी जूनियर महिला टाइकोंडो क्योरोगी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के एक शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत, अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। और IPL क्रिकेट में आज शाम पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगी।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत से खड़ा हो सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में BJP सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर से कुंभाभिषेक किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक भी किया गया। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिनमें सूर्य किरण एरोबेस्टिक टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज स्ट्रीम्स के कार्डियोलॉजी विभाग को अरुणाचल प्रदेश में पहली बार सफलतापूर्वक प्रीक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनियल क्रोनेरी एंजियोप्लास्टी PTCA विथ इंट्रावैस्कुलर लिट्रोटाइप सी IVL प्रक्रिया संपन्न करने पर बधाई दी। ये जटिल ट्रिपल वेस्लर कोरोनेरी आर्टरी डिजीज तथा भारी कैल्शियम जमा से पीड़ित के मरीज पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे अरुणाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ट्रिम्स ने नियमित एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया पहले से ही सफलतापूर्वक की जा रही है और अब तक 1000 से अधिक सफल मामले भी पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि ये प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ और जटिल तथा राज्य में अपनी तरह की पहली प्रक्रिया रही। उन्होंने कहा कि इंट्रावैस्कुलर लिटोट्राय

0: एफसी तकनीक का सफल उपयोग ये राज्य में उन्नत हृदय चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI नाहरलगन ने रूपा स्थित वांगडी इंडोर स्टेडियम में रविवार को संपन्न हुए 29वीं क्योरोगी और 11वीं पुमसे राज्य स्तरीय ट्वाइकोंडो चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। अरुणाचल ट्वाइकोंडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 सिलो, 4 विद्यालय साई नाहरलगन तथा सांगे लहादेन स्पोर्ट्स अकेडमी ईटानगर के कुल 632 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कालाकतांग विधायक शेतेन चौम्बे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अत्यंत गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश अब टाइकोंडो पुमसे में न केवल राष्ट्र स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं राज्य के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण दर्शाने के लिए सशक्त मंच प्रदान करने के साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले की दागीर बासार ने रूपा स्थित वांगडी इंडोर स्टेडियम में आयोजित अंडर 42 केजी जूनियर महिला ट्राइकोंडो क्योरोगी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान बेस्ट क्योरोगी फीमेल एथलीट से भी सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर विधायक न्याबी जीने दिर्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में दागीर को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने एक बार फिर लेपारादा जिले सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दागीर बासार ने राष्ट्र स्तर पर अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा भी की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू किया जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा में आवश्यकता वाले वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अभी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे की जिम्मेदारी से काम करना अभी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम किया जा सके। और IPL में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashwani, the news read by Nara Koyang. Prime Minister Narendra Modi has called upon countrymen to become a partner in strengthening the nation amid the West Asia crisis. The Prime Minister made 7 appeals to the nation while addressing a function in Hyderabad yesterday. He urged citizens to help conserve foreign exchange reserves by reducing the consumption of imported fuel through use of public transport and carpooling. The Prime Minister appeal comes at a time when crude oil prices are trading above $100 per barrel due to West Asia crisis and a deadlock in the Strait of Hormuz still persist. Crude oil prices had touched a 52-week high of $126 per barrel at the end of last month. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Puja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today said that the state government has decided to transfer land to the Border Security Force for erecting a fence along the Bangladesh border. The decisions were taken in the first cabinet meeting held today after the formation of a new government in West Bengal after the elections. The Chief Minister declared within 45 days land will be handed over to the Border Security Force for fencing along state's boundaries. Mr. Adhikari announced the implementation of the center's flagship Ayushman Bharat health scheme and several other schemes of the union government in the state. The cabinet also approved the proposal for a five-year extension in the age limit of the school job applicants. In the newly elected Legislative Assembly of Tamil Nadu today, more than 100 members were sworn in after the pro tem speaker Karuppaya invited the members. Chief Minister Joseph Vijay and the cabinet members, opposition leaders Udayani Stalin, former Chief Minister Edappadi Palanisamy, O. Paneerselvam, and others of the alliance also took the oath. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnu has also urged citizens and businesses to reduce expenditure on items that require foreign exchange in view of the ongoing global uncertainties. He was addressing the CII Annual Business Summit in New Delhi today. Centre has notified the implementation of the Viksit Bharat Guarantee for Rojgar and Ajibika Mission Gramin Act 2025, VVG Ramji. The Act will be rolled out nationwide from 1st of July this year. The Rural Development Ministry said that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower the rural India. Defence Minister Rajnath Singh today chaired a meeting of the informal empowered group of ministers constituted to monitor the situation in West Asia. The meeting was held to review the evolving situation in the region. Union Minister Jagat Prakash Nadda, Hardeep Singh Puri, Sarvanand Sonowal, Kiran Rijiju, Dr. Jitendra Singh and K. Ram Mohan Naidu also attended the meeting. In Himachal Pradesh, six people were killed and four others, including two children, were seriously injured when their vehicle plunged into a gorge near Kakira in the Batiyat area of Chamba district. The injured have been admitted to Tanda Medical College. Among the deceased, five were tourists from Gujarat, while the driver was a resident of Mandi district in Himachal Pradesh. The accident occurred at the wee hours of today. Country's economy has stayed resilient despite global headwinds. According to a SBI research report released today, the economy is projected to grow by 6.6% in the fiscal year 2026-27. The report also estimates real GDP growth at nearly 7.2% in the fourth quarter of last fiscal year. National Technology Day is being celebrated today. On this day in 1998. India successfully tested its nuclear bombs in Pokhran, Rajasthan. The day celebrates the country's scientific achievements, technological advancements and growing innovation ecosystem. India Met Department has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu and Kashmir, Ladakh today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, Uttarakhand administration has urged the Char Dham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. That is all in this news bulletin. Namaskar.
4: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
5: अपै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़वा नोक्ते प्रोग्राम अथु रंगजथा वानबंगा सानपोत दंग रेन रेन नंग नोक्ते खोबो चोतात कत थेजा हुंग

अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार। पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.5

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस शाम के सफर में आपके साथ हैं आपके अपने रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्रों, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:07 हो रहे हैं, और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब। अहंकार एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से व्यक्ति को अपनी गलतियां और दूसरों की अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। जहां अहंकार होता है वहां प्यार की जगह नहीं होती है। श्रोता मित्र, इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं OMG यानी ओ माय गॉड फिल्म का ये गीत।

0: OMG फिल्म से ये गीत श्रेया घोषाल अमन त्रिखा की आवाज में मस्ती भरे डांस से भरपूर इस गाने के बाद आइए आपको सुनवाते हैं ऐसे ही मस्ती भरा एक और गीत।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

श्रोतमित्रा, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। जी हाँ श्रोतमित्रा, मस्ती भरे गीतों के बाद अब हम आपको अगला गीत सुनाने जा रहे हैं, रॉय फिल्म से बेहद ही खूबसूरत गीत।

शाम के इस म्यूजिकल सफर में उम्मीद है आप सभी की शाम बेहतर शानदार मजेदार बन गई है, दिन भर के काम की थकावट भी दूर हो गई है। जी हां श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं एक और मजेदार गीत। जी हां, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का ये आखिरी गीत लीजिए प्रस्तुत है।

0: न्यूयॉर्क फिल्म का ये गीत केके की आवाज में, जी हाँ श्रोता मित्र, इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गानों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। हम आपको लिए चलेंगे आपको प्यार भरे म्यूजिकल सफर पर, कार्यक्रम शाम की महफिल के तहत। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची, मिलते मिलते सनम, ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में,
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

जी हाँ श्रोता मित्रों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम शाम की महफिल का। जी हाँ, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको ले चलेंगे प्यार भरे म्यूजिकल सफर पर। जी हाँ, कार्यक्रम के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदे खूबसूरत गाने। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम के महफिल के तहत खूबसूरत इन गीतों का। जी हाँ, आप सुन रहे थे शानदार फिल्म का ये गीत नीति मोहन और निखिल पोल की आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं चाय का मत।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and

0: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का म्यूजिक और इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। श्रोता मित्रों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का ये अंक यहीं समाप्त होता है। श्रोता मित्र, उम्मीद है इन प्यारे प्यार भरे सुकून भरे संगीत के सेगमेंट से आप सभी आनंदित हुए होंगे। जी हाँ, फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक और आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। और आपको बता दें कि इस समय शाम के 6:02 हो रहे हैं और इसी के साथ ही आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन पाएंगे ए दिल है मुश्किल फिल्म के गाने। तो लीजिए, आप आगे सुन पाएंगे बैक टू बैक इस फिल्म के गाने। चलिए गीतों की शुरुआत करते हैं ब्रेकअप सॉन्ग के साथ।

श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म के गीतों का। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक और इसके बाद भी आपको सुनवाएंगे इसे फिल्म के गाने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे ए दिल है मुश्किल फिल्म के गीतों का। जी, इस आपको बताते कि इस आखिरी गीत को आप सुन रहे थे अमित मिश्रा की आवाज में आप, और इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों पर का आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और आगे आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: cu ie.
1: O, o, de lor.
0: Ia mine pe că buluai.
1: O, o, de lor.
0: Sa, cum zine pe că lupung.
1: O, o, de lor.
2: अभी आप सुन रहे थे आदिश श्रोताओं का समाचार। आदिश श्रोताओं के पूरे कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम आज के कलाकार का। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम आज के कलाकार में तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आज के हमारे कलाकार फनकार हैं जिन्होंने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्मों में भी अपना जलवा दिखाया। इनके आगे तो अच्छे अच्छे हीरो फेल हो जाया करते थे। जी हाँ श्रोता मित्रों, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की। जी हाँ, उनके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कोयला फिल्म का ये गीत।

हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि पूरे देश भर के सबसे बड़े विलेन की बात हो तो अमरीश पुरी का नाम लिया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है। इन्होंने ढेरों फिल्में की और इनके द्वारा निभाए गए ज्यादातर रोल सुपरहिट रहे। आज भी वे सारे रोल एक मिसाल के रूप में देखे जाते हैं। एक समय था जब वो क्लर्क की नौकरी किया करते थे, तब भला उन्होंने कहां सोचा था कि वो एक दिन इंडस्ट्री पर राज करेंगे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उन्हें कास्ट करने के लिए लाइन में खड़े होंगे। भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विलन अमरीश पुरी, जी हाँ, उनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। पहली बार 21 इयर्स में उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया। तब एक फिल्मेकर ने उनकी ये कहकर आलोचना कर दी कि उनकी आवाज काफी डरावनी है और चेहरे में भी दम नहीं है, मगर टैलेंट कहाँ किसी से दबता है। उन्होंने आगे चलकर काम किया और सबको गलत साबित किया। वहीं आवाज और रोब के वे बादशाह कहलाए। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

आप सुन रहे थे गदर फिल्म का ये बेहद ही प्यारा गीत उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की। 1954 की बात है जब वे ऑल इंडिया रेडियो में क्लर्क का काम किया करते थे। वो AIR और हवा महल के कार्यक्रमों को मैनेज किया करते थे, मगर फिर उनकी किस्मत पलटी और वे फिल्मों में आए, खूब नाम कमाया और इंडस्ट्री में खास छाप छोड़ी। फिल्मों में पहले से अमरीश पुरी के भाई मौजूद थे और ये समय होगा करीब 1950 का। फिर अमरीश पुरी भी यहां यानी कि मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आए। शुरुआत में वह देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में छोटे से रोल में दिखे। आगे चलकर उन्होंने हम पांच, कुर्बानी, मिस्टर इंडिया, शक्ति, हीरो, मसाल, कसम पैदा करने वाले की जैसी फिल्मों में बतौर विलेन खूब नाम कमाया। 1976 से 2005 तक अमरीश पुरी ने करीब 450 फिल्मों में काम किया। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। जी हाँ, एक वक्त था जब उन्हें मुंहमांगी रकम दी जाती थी, डायरेक्टर बस उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आप आनंद ले रहे थे। जी हाँ श्रोता मित्रों, अमरीश पुरी की तमाम यादगार फिल्मों में एक फिल्म मिस्टर इंडिया थी। इस फिल्म में मुगेम्बो का किरदार आज भी लोगों को भुलाए नहीं भुलाता। जिस रोल के लिए अमरीश पुरी को हर ओर से तारीफें मिली, उसके लिए वो पहली पसंद थे ही नहीं। यहां तक कि ये रोल उन्हें उस वक्त ऑफर हुआ जब अनुपम खेर के साथ इसी रोल की ज्यादातर शूटिंग हो चुकी थी। मेकर्स को अनुपम खेर के रूप में मुगेम्बो में वो बात नजर नहीं आ रही थी जो वो देखना चाहते थे। लिहाजा इतनी शूटिंग होने के बाद भी ये रोल अमरीश पुरी को मिला और उसके बाद की कहानी अपने आप में इतिहास है। जी हाँ, उन्होंने मुगेम्बो के रोल के लिए खूब मेहनत की थी, इतनी कि उसके संवाद के साथ ही कॉस्ट्यूम डिजाइन भी उन्होंने ही तय करवाया। ब्लैक आउटफिट में मुगेम्बो का पूरा लुक उन्होंने अपने डिजाइनर के साथ मिलकर तैयार करवाया था। इसके साथ ही मोटी आईब्रो और बिना दाढ़ी वाला लुक भी उनका ही आइडिया था। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

अमरीश पुरी जी हाँ, श्रोता मित्र अब इस दुनिया में नहीं है। 72 यानी कि 72 साल की उम्र में 12 जनवरी 2005 को उनका निधन हो गया। बॉलीवुड में जब भी खलनायक की बात होती है तो उसका जिक्र अमरीश पुरी के नाम के बिना अधूरा है। उन्होंने अपने हर किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज भी उन्हें उन भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का ये आखिरी गीत।

इस गीत को आप सुन रहे थे प्रेम पुजारी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्रों, ये वो फिल्म है जिसमें अमरीश पुरी ने पहली बार अभिनय किया था, छोटा सा किरदार निभाया था। इसके साथ ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आगे आप कुछ ही क्षणों में सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। फिलहाल कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

अभी आपने सुना निश्चित श्रोताओं का समाचार। निश्चित श्रोताओं के कार्यक्रम को पूरा सुनने के लिए आप हमारे मीडिया वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलो हर्ट्स में अभी जुड़ सकते हैं।

0: संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

कभी कभी फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग, मुकेश की बेहतरीन आवाज में ये सदाबहार गाना। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं कभी कभी फिल्म के खूबसूरत गीतों का। जी हाँ, यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म कभी कभी एक क्लासिक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने अभिनय किया है। आपको बता दें कि ये फिल्म दो पीढ़ियों की प्रेम कहानी को दर्शाती है, जिसे खय्याम के बेहतरीन संगीत और साहिर लुधियानवी के गीतों के लिए याद किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

जी हाँ श्रोता मित्रों, प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। जी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के द्वारा लिखे ये गीत खयाम के संगीत। जी हाँ आप सुन रहे हैं कभी कभी फिल्म के बेहतरीन गाने। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे कभी कभी फिल्म के बेहतरीन गीतों का। जी हाँ, ये आखिरी गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अन्य साथियों की आवाजों में। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहें अरुण एफ एम 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। फिलहाल हम ले रहे हैं एक अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

पद्मावत फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल, स्वरूप खान और अन्य साथियों की आवाजों में अभी आप आनंद ले रहे थे। जी हाँ श्रोता मित्रों, संगीतमय सफर पर अब हम आपको एक कहानी सुनवाना चाहते हैं। जी हाँ, तो कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक खुला विशाल मैदान था जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। उसी मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और घना पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थी और उसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई थी। वो पेड़ अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता था। उसके आसपास के छोटे पौधे, झाड़ियां, घास के तिनके सभी उसकी छाया में रहते थे और उसकी ताकत से प्रभावित होकर उसे बहुत आदर देते थे। पेड़ को लगता था कि वो इस मैदान का राजा है और बाकी सब केवल उसकी सेवा के

लिए हैं। उसके भीतर घमंड भर चुका था। वो अपने से छोटे किसी भी जीव या पौधे को कोई महत्व नहीं देता था। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और तूफान आने के संकेत मिलने लगे। सारे पक्षी उड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मैदान में खड़े सभी छोटे बड़े पौधे डर के मारे कांपने लगे। उसी समय एक छोटा सा तिनका, जो तेज हवा में उड़ रहा था, पेड़ के पास आकर गिरा। तिनका बहुत हल्का था और तूफान के झोंके में अपना संतुलन खो बैठता था। उसने पेड़ से विनम्रता से कहा, हे महान पेड़, मैं एक छोटा और निर्बल तिनका हूं। ये तूफान मुझे उड़ा ले जाएगा। क्या मैं आपकी जड़ों के पास शरण ले सकता हूं? आपकी जड़ें तो गहरी हैं, वहीं मैं सुरक्षित रह पाऊंगा। पेड़ ने घमंड भरे स्वर में कहा, तिनके, तुम बहुत ही छोटे और तुच्छ हो। मैं इतना विशाल और ताकतवर हूं, तुम्हारी उपस्थिति मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाएगी। जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेचारा तिनका दुखी होकर वहां से चला गया और पास ही एक चट्टान की दरार में छिप गया। थोड़ी ही देर में तूफान पूरी शक्ति से मैदान पर टूट पड़ा। हवाएं भयानक गति से चलने लगी। तेज वर्षा और गरजती बिजली ने सबको हिलाकर रख दिया। पेड़ ने भी अपनी पूरी ताकत से तूफान का सामना करने की कोशिश की। वो अपने आप को बहुत मजबूत समझता था, परंतु तूफान की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। जोरदार हवाओं ने उसकी जड़ों को ढीला कर दिया और अंत में वो विशाल पेड़ जमीन में उखड़कर गिर गया। उसकी टहनियां टूट गई और वो मैदान में नष्ट होकर बिखर गया। तूफान के थमने के बाद तिनका धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि वो विशाल पेड़, जो कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब धरती पर पड़ा हुआ है। तिनका शांत था, सुरक्षित था और उसने सोचा, जी हाँ, तिनका ने सोचा, जिसने मुझे तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था, उसका घमंड ही उसके विनाश का कारण बन गया। मैं छोटा हूं, पर विनम्रता और बुद्धिमत्ता के कारण आज सुरक्षित हूं। जी हाँ श्रोता मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और घमंड का परिणाम विनाश होता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहता है। हमें कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आज जो हमें छोटा लग रहा है, वही कल कुछ बड़ा कर जाए। जीवन में विनम्रता, दयालु और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है। जी हाँ, ये प्रेरणादायक कहानी उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गुजारिश फिल्म का ये गीत।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में देवदास फिल्म का ये बेहतरीन गीत। इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि 8 बजते ही, जी हाँ रात के 8 बजते ही, यानी कि कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम के साथ। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: Stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dil se dil tak baat pahunchi, मिलते मिलते सनम ओ,
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को गैर अतः का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके लिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ अपनी मिट्टी की खुशबू यानी कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम सुनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग समुदायों के गीत। तो चलिए एक पल भी देर किए बिना शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत और सुनते हैं ये आदि गीत, जिसे गाया है हम सबके फेवरेट तालुत मिजे ने।

तलुत मिजे सर, आपकी आवाज और गीत हमेशा यही फील कराते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हैं और हम गाना के जरिए आपसे बात कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप पता नहीं गीत। ये गीत है भाई बहन के रिश्ते का, भाई बहन के प्यार का। भाई अपनी बहन से दूसरों की चीजें न ललचाने की बात करते हुए उन्हें वो सब देना चाहते हैं जो उनके बस में है। इस गीत को गाया है अपातानी के मशहूर गायक हागे तादने।

जरूर कहना चाहूंगी, जब हम अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है, खासकर रुपए पैसे के मामलों में, तो कई बार हमारी जरूरत को फुलफिल करने के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेहनत से हम जितना भी कमाते हैं, जितना भी पाते हैं, उतने में खुश रहने में ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत अरुण FM 103.1 MHz पर अपने रेडियो साथी गईर के साथ।

हमारा पहला गुरु और हमारा वजूद होता है। चाहे हम कहीं भी रहे, अपने दिल से अपने माता पिता का प्यार और ख्याल कभी नहीं खोना चाहिए। इसी तरह अपने माता पिता के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते ये वांचो गीत आप सुन रहे थे बोतिक लुकम की आवाज में। तो आइए अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नोकपन हांगसिक की आवाज में, तुत्सा गीत।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपका अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश की गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत,
1: जहाँ एक खूबसूरत लड़की को मर्द अपने बहकने की वजह मानते हैं, वजह बताते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है गालो गीत हम सब के चहेते जेली काई की आवाज में।

श्रोताओं, जेली काई द्वारा गाए इसी गालो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सप्ताह में 3 बार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

जी हाँ, अभी आप आनंद ले रहे थे अरुणाचल प्रदेश के विविधता को दर्शाता कार्यक्रम अपना गीत का। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे यानी कि 8:30 पर आप आनंद ले पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम का।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ श्रोता मित्रों, आगे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

मैं आशिक हूँ बहारों का, फिजाओं का, नजारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवा धरती के अनजाने किनारों का। जी हाँ श्रोता मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला गीत। जी हाँ, मुकेश की आवाज में इसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। लीजिए प्रस्तुत है आशिक फिल्म का ये गीत।

भोले मिश्र नगमों के इस सेगमेंट में आप सुन रहे थे आशिक फिल्म के गाने। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत का आप सुन रहे थे मुकेश चंद माथुर यानी कि मुकेश के आवाज में शैलेंद्र के लिखे गीत जयशंकर के म्यूजिक के साथ। तो चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आपको सुनवाते हैं आरजू फिल्म के गाने।

0: श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे थे आरजू फिल्म के गीतों का। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे मुबारक बेगम, आशा भोसले और अन्य साथियों की आवाजों में। जी हाँ, हसरत जयपुरी द्वारा लिखा ये गीत। हाँ, ये इश्क छुपाए छुप ना सका, ये इश्क वो चलता जादू है। हाय, कुछ होश नहीं रहते कायम, इस इश्क पे किसका काबू है। जी हाँ, म्यूजिक से सजाया है, संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे आरजू फिल्म के गीतों का। आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 30,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

अभी आप सुन रहे थे बेमानव फिल्म का ये गीत आशा भोसले और अन्य साथियों की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये आखिरी गीत बेमान फिल्म से।

0: बेमान फिल्म के इस गीत का आप आनंद ले रहे थे मुकेश की आवाज में। श्रोता मित्र, इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की समाप्ति पर अब हम आप पहुंचे हैं और आप सभी से विदा लेने का वक्त भी हो चला है। इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और साथ ही अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, जाने से पहले ये भी बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहे अरुण FM 103.1 MHz पर। और अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी नीलम को दीजिए जाने की अनुमति। आप रखे अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सूरत सीधी सादी है पर सीरत है शैतान।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331-0481-2371-7116 और 2331-44444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह के से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज चलाएंगे, तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है। आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी
0: शुरू हुई मई के महीने में
2: जी, आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी के ब्लास्ट होने के से लगी। उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है।
0: जी, शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश
0: जी।
3: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई कई गाँव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं
0: जी,
3: लेकिन फायर पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जाता है, काबू किया जा सकता है?
0: प्रशांत जी, जंगल में आग एक गंभीर समस्या है।
1: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज्यादा होता है, और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पे आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहां पे आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पे आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो। क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं। तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइंड कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइंड करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
0: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
4: नमस्कार जी निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-20, 25-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे एमसीडी है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा घबराहट में लोग अपने ज्यादा जान दे देते हैं तो इसके बारे में भी कुछ बताए। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी राकेश जी।
2: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यू एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसमें सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है नहीं है। अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही है, संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके साथ एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
0: अतुल जी ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
2: देखिए ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ता है उससे। उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
0: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
1: हाँ नमस्कार, रमाशंकर वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए है कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीजों का रखरखाव रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबिलाइजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो वो ट्रिप कर देता है। तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहां हो जाती है कि ये सारी चीजें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पे सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉकड्रिल की बात करते हैं, DFS, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉकड्रिल

0: कंडक्ट करता है। तो
1: जी
0: मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर होना है।
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, तो
0: हाँ
1: रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं सबसे बड़ी
0: हाँ
1: बात
0: लिफ्ट
1: होना
0: से
1: चाहिए।
0: आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि
1: दम
0: होती है,
1: घुटता है फिर।
0: दम घुटता है। तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी नमस्कार जी, मैं
1: नमस्कार
2: धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। जैसे कि
0: नमस्कार।
2: मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं। तो मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियां होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियां होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके
1: जी
2: अंदर आग लगी थी, उस फैक्ट्री
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ
2: में
1: गए
2: सवाल
1: हैं।
2: यही कहना
1: जी जी हम
2: चाहूंगा।
1: समझ गए हैं प्रशांत
2: नहीं
1: जी,
2: लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए
1: नहीं आप तीन सवाल जो
2: आग
1: पूछे। जी
2: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में,
1: जी
2: छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
1: अतुल जी,
3: धर्मवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूंगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुंचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15 मिनट 16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियां हैं, गाड़ियां पार्क होती हैं रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया। तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिलके अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूंगा, ज्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहां हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज्यादा नुकसान हो गया। तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहां हम देखते हैं साड़ियां भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है वो बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, दो दो दिन लेती है
1: जी।
3: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा

0: लगी तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है। पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है। उसके बाद आपको, अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहां पे आप इमिडिएटली फोन कर दीजिए। और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं, बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। उसके बाद जितना हो सकते हैं जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
0: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी के जैसी घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दे, लोगों को जाने आने का रास्ता दे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहां जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं कृपा जाखड़ बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो अंदर पानी की कमी है आजू बाजू में, कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, अंदर पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहां पे जो जलने वाली चीज है, उसके आस पास में जो जलने वाली चीज है उसको वहां से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं, तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए, सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किया है, दो नंबर है, आप इनको याद रखिए, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास रहेगा।

0: दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, सिलेंडर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है, तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है, कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है, आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं, उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर है, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने जो जहां भी फायर ब्रिगेड, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहां चिट्ठी लिखे, वहां से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए, उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है पानीपत से, हैं ये शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके। CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहां से निकल जाना है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकते आपको दूर अपने आप को करना है, और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहां जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं। जी प्रमोद, नमस्कार, स्वागत।
3: हाँ जी, नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह है, या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए, इसीलिए ये एमसीबी एलसीबी एलसीबी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर ये आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा नेचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी। नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की। एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी, प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
4: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का भी आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
6: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
4: असम में कल हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। एसबीआई की मई 2026 की शोध रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं और क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक रात में गर्मी रहने की आशंका है। वहीं आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 211 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 32 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on natural resources, terming the West Asia conflict one of the decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
8: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
7: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases. The government today informed that there is no shortage of any petroleum products in the country, and India has a stock of 60 days of crude oil, 60 days of natural gas and 45 days of LPG. This was informed during the 5th meeting of the informal group of ministers on West Asia, chaired by Defence Minister Rajnath Singh in New Delhi. The meeting took stock of the latest developments in the conflict and discussed ways to bolster country's readiness to ensure its minimum effect on the people. India is among the few countries where petroleum prices have held steady throughout this period of global volatility, even after more than 70 days since the conflict started. During the meeting, it was informed that the foreign exchange reserves stand at a comfortable $703 billion. The government said the supply management has been good and the people need not panic or resort to overpurchase of fuel and other products. During the meeting, Defence Minister Rajnath Singh directed the officials to take concrete steps to implement Prime Minister Modi's 7-point appeal at the ground level. The meeting was attended by Union Ministers J.P. Nadda, Ashwini Vaishnaw, Hardeep Singh Puri, Kiran Rijiju, K. Ram Mohan Naidu, Sarbanand Sonowal and Dr. Jitendra Singh. The centre has notified the implementation of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, that is Viksit Bharat GRAMGI. The act will be rolled out nationwide from the 1st of July this year. The Rural Development Ministry said that the act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower the rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country. In Assam, preparations are in full swing for the swearing-in ceremony of the BJP leader Hemanta Biswa Sarma as Chief Minister for a second consecutive term tomorrow. The ceremony will be held in Guwahati. The swearing-in will mark the NDA's third consecutive term in Assam. Dr. Sharma today visited the venue to review the arrangements. Speaking to media, he said Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister

0: Mit Shah, Defense Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen will attend the ceremony. Several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states are also expected to be present. The IMD has forecast heat wave conditions over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. Meanwhile, heavy rainfall is likely to prevail over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In IPL cricket, chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals were 38 for 3 in 4.5 overs at Dharamshala when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया ईरान और अमेरिका संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध में अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है पहले कोरोना का संकट फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें
1: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया है
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें कार पुलिंग को बढ़ावा दें ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
3: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत

0: खत्म करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
3: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
1: संक्षिप्त रिपोर्ट को संबोधित करते हुए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर और चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
5: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
6: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और अमेरिका पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम और अस्थिरता को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंता के बावजूद संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर गतिरोध में फंसे हुए हैं। हाल के दिनों में गोलीबारी, जहाजों और खाड़ी देशों पर हमले और इसराइल तथा लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्ला के बीच नए सिरे से झड़पें हुई हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर इस महीने की 13 से 15 तारीख तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये घोषणा की। लगभग 9 वर्ष में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली चीन की यात्रा होगी। ये यात्रा ईरान से व्यापार और जारी संघर्ष को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के बीच हो रही है। अफगानिस्तान में बाढ़ से नंगरहार प्रांत में लगभग 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने बताया कि प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री दी गई है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। IOM के अनुसार बाढ़ में कई लोगों के घर, खेती की जमीन और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। संगठन ने कहा कि लगमान और कुनार प्रांतों में भी राहत कार्य जारी है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। हालांकि आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों को लेकर गतिरोध जारी। अफगानिस्तान में नांगरहार प्रांत में आई बाढ़ से लगभग 2000 परिवार प्रभावित और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।